ये तो हम हमेशा ये कहते हैं कि मुस्कुराहट एक ऐसी जादुई दवा है जो न केवल आपके तनाव को कम करती है बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना देती है। और हम आज भी यही कहेंगे, और हम ये भी कहेंगे कि सुबह उठकर आईने में देखें और खुद को एक प्यारी सी मुस्कान दे डालें। ये छोटी सी आदत आपके शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स को बढ़ाती है और आपको दिन भर तरोताजा रखती है।

जो कल बीत गया वो तो हमारे हाथ में है नहीं, और जो आने वाला है, जो अभी आया नहीं है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में ये आज है, यानी कि वर्तमान है जिसमें हम जी रहे हैं। तो कल की चिंताओं को आज पर हावी ना होने दें, आज के हर पल को पूरी तरह जिएं, पूरी लगन से अपना काम करें और खुश रहें।

0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 రెయిన్బోతో జీవితం రంగులమయం నిలయంలో సమయం 6 గంటలు న్యూస్ హెడ్లైన్స్ వింటారు.
1: ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మే సర్ ఫిరోజీ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे. दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे. राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है. ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी. ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची. सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी. आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी. गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे. बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प

0: जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के दो दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ. वेल, इट्स 5 मिनट्स पास 10 बाय द स्टूडियो क्लॉक, और एक बार फिर से हम हाजिर हैं उन्हीं बेहतरीन नगमों के साथ जिनके साथ होने से कोई भी काम आसान लगने लगता है, क्योंकि ये म्यूज़िक ही तो है दोस्तों जो हमारे हर पल से हमें जोड़े रखता है ना. एंड अगर आप हमसे हर पल जुड़े रहना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारा न्यूज़ ऑन एयर ऐप, और इस ऐप के ज़रिए आप FM रेनबो हैदराबाद के साथ बने रहिए और सुनते रहिए ढेर सारा इन्फोटेनमेंट. वेल, मैं हूं निशा, आज आपकी हम सफ़र इस खूबसूरत म्यूज़िकल जर्नी में, जिसे कहते हैं नमस्ते, हेलो, आदाब. तो सबसे पहले आप सभी प्रिय श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी पीसफुल एंड रिफ्रेशिंग मॉर्निंग अहेड. वेल, इससे पहले कुछ और बातें हों, चलिए फ़िलहाल के लिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना और इस म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत करते हैं. एंड ये गाना है फ्रॉम द फिल्म तनु वेड्स मनु, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग. एंड कहीं ना कहीं जो इस गाने के लिरिक्स हैं ना, वो दिलो दिमाग में बस जाते हैं. बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स फ्रॉम द फिल्म तनु वेड्स मनु, ये गाना यूं ही.

स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:17। अ वेरी गुड मॉर्निंग हैदराबाद। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9 आकाशवाणी हैदराबाद। मैं हूं निशा आपके साथ। आज आपकी हम सफ़र इस खूबसूरत से म्यूज़िकल जर्नी में, इस म्यूज़िकल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। और यही कहना चाहूँगी कि वैसे दोस्तों, आपको भी क्या यही लगता है कि आजकल ना हम लाइफ में थोड़ा ही ज़्यादा ही कुछ सीरियस लेने लग हैं, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगे हैं? क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है, हर चीज़ का प्रेशर ले रहे हैं, हर बात में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और फिर छोटी सी प्रॉब्लम भी लगने लगता है जैसे बहुत बड़ा इशू बन गया हो। और फनी बात पता है क्या है, कभी कभार हम बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं किसी बात को लेकर, और बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे, इतनी टेंशन तो लेने की ज़रूरत कभी थी ही नहीं। वो मैटर जिसे हम कस कर पकड़े हुए थे, वो इतना इम्पॉर्टेंट कभी था ही नहीं जितना कि हम उसे बना रहे थे। सो वाई नॉट अपने आप को ये समझाने की कोशिश ही की जाए कि हर एक टॉपिक, हर एक मुद्दे को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि किसी की कही गई हर बात सही हो, और ज़रूरी नहीं कि आपका नज़रिया किसी और से मैच करे और हर कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चले। ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि बेफिजूल के ख्याल दिमाग में ना आए, तो बेफिजूल सोचना छोड़ दीजिए। क्योंकि शायद ज़िंदगी में सुकून तब आता है दोस्तों, जब हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि हर बात को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी नहीं होता, हर इंसान आपको समझे ये भी पॉसिबल नहीं होता। और पता है क्या, हम हालात से उतने नहीं थकते जितना कि थक जाते हैं।

हर चीज़ को दिलो दिमाग में जगह देते देते। और इसीलिए दोस्तों ज़रूरी है ये मान लेना कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो चलिए इसी खूबसूरत से थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको मैं सुनवाती हूँ कुछ बेहतरीन नग में। तो ये जो नेक्स्ट सॉन्ग मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ ये है अरिजीत सिंह की आवाज़ में फ्रॉम द फिल्म जब हैरी मेट सेजल। जी हाँ, और जब दो लोग मिलते हैं, दो ऑपोजिट अट्रैक्ट होते हैं, तो बहुत कुछ होता है। आई थिंक एक खूबसूरत सी जर्नी स्टार्ट होती है जब दो अजनबी मिलते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये गाना उसी खूबसूरती को बयां करता है। वेल, सुनते रहिए, ये है FM रेनबो 101.9। इसी के साथ सुबह के 10 बजकर 20 मिनट।

Well, it's 32 minutes past 10 by the studio clock. A very good morning, dear listeners. You are listening to Namaste, Hello, Adab on FM Rainbow 101.9. और जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि हमारे कुछ listeners हमसे जुड़ चुके हैं. And यहाँ पर सबसे पहले मैं message लेना चाहूँगी सरवर अली जी का. लिखते हैं, गुड मॉर्निंग निशा मैडम. तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. उम्मीद है कि आपका ये जो दिन है वो अच्छे से स्टार्ट हुआ हो और आप कुछ अच्छा करने की राह पर चल चुके हों. तो ये लिखते हैं कि आज ऑलराउंडर सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की बर्थ एनिवर्सरी है. तो जी हाँ, बिल्कुल, लेजेंडरी सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की बर्थ एनिवर्सरी है और उन्हें हम याद कर रहे हैं. उनके सॉन्ग्स भी मैं प्ले करूँगी कुछ देर बाद. तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो. एंड फिलहाल के लिए दोस्तों, मैं जो सॉन्ग आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है. एंड कभी कभी होता है ना कि प्यार जो है वो धीरे धीरे दिल में जगह बनाता है ना, बिना शोर के, बिना किसी आवाज़ के. और फिर एक दिन लगता है कि हाँ, शायद यही प्यार है, प्यार हो चुका है. और जब दिल किसी के लिए खुलने लगे तो फिर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस प्यार को हो जाने देना चाहिए, है ना. और इसी खूबसूरत एहसास को बहुत ही प्यारे अंदाज में बयां करता है ये जो अगला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ, वो फ्रॉम द फिल्म प्यार को हो जाने दो, फ्रॉम द मूवी दुश्मन, अ सूदिंग रोमांटिक

सुबह के 10:40 स्टूडियो की क्लॉक में। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9 आकाशवाणी हैदराबाद। मैं हूं निशा, आपके साथ आज आपकी हम सफ़र इस खूबसूरत से म्यूज़िकल जर्नी में। और जी हाँ, आज की ये जो म्यूज़िकल जर्नी है ना, ये और भी खूबसूरत हो चुकी है और भी स्पेशल हो चुकी है, बिकॉज़ टुडे इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर म्यूज़िक लवर्स अक्रॉस इंडिया, बिकॉज़ टुडे वी सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ वॉइस दैट डिडन्ट जस्ट सिंग सॉन्ग्स, अ वॉइस दैट बिकेम एन इमोशन, द लेजेंडरी SP बालासुब्रमण्यम, लविंगली नोन एज SPB सर। एक ऐसी आवाज़ जिसने हमें हंसाया, कभी प्यार का एहसास दिलाया, तो कभी इमोशनल कर दिया, और कभी बस एक गाने से पूरा मूड ही चेंज कर दिया। बॉर्न ऑन द 4th of June 1946 इन आंध्र प्रदेश, SP बालासुब्रमण्यम सर क्रिएटेड मैजिक विद हिज वॉइस फॉर ओवर 5 decades, एंड व्हेन आई सी मैजिक आई ट्रूली मीन इट। इमेजिन सिंगिंग इन नॉट वन, नॉट टू, बट 16 Indian languages and recording more than 40,000 songs. That's not just talent, that's pure musical history, dear listeners. Whether it was romance, heartbreak, devotion, celebration, somehow SPB sir's voice always felt personal, like he was singing exactly what your heart wanted to say, from Telugu to Tamil, Kannada to Malayalam, and of course unforgettable Hindi songs too. His voice united listeners across generations, and talking about recognition, he was honored with several prestigious awards, including 6 National Film Awards, the Padma Shri, Padma Bhushan and the Padma Vibhushan. But perhaps his greatest award was the endless love people continue to shower on him even today. So today, on his birth anniversary, let's pause for a moment and celebrate the man, the music and the memories. And what better way to do than through one of his unforgettable songs, right here on FM Rainbow 101.9. Stay tuned.

Subramaniam, a voice that truly defined generations, a voice that time simply cannot replace. तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और अपनी सुनहरी यादों को थोड़ा और पास आने दीजिए, बिकॉज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग एस पी बाला सुब्रमण्यम जी थ्रू सम ऑफ हिज अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स. एंड ऑनेस्टली फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट लेजेंड्स, एस पी बाला सुब्रमण्यम जी ट्रूली बिलोंग टू अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर. फ्रॉम सोलफुल रोमांटिक सॉन्ग्स टू एनर्जेटिक ट्रैक्स, फ्रॉम डिवोशनल म्यूजिक टू इमोशनल मेलोडीज, he somehow made every song feel personal. And let's not forget some of the timeless films and unforgettable musical moments connected with him, whether it was the innocence of Maine Pyar Kiya, the emotions of Sajan, the magic of Ek Dooje Ke Liye, or countless iconic songs in Telugu and Tamil cinema. Somehow his voice always carried sincerity, and perhaps that's why generations continue to listen to him, because trends change, music styles change, but some voices become timeless, and S.P. Bala Subramaniam ji will always be one of them. So let's continue this musical tribute and relive the magic of a legend only on FM Rainbow 101.9.

0: और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत के तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यविट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान श्री रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The discussions involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security,

बारह बजकर 30 मिनट। अ वेरी गुड आफ्टरनून डियर लिसनर्स। अभी जो सॉन्ग आप सुन रहे थे बहुत ही प्यार सा सॉन्ग था फ्रॉम द फिल्म बर्फी। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग राइट। दोस्तों कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस गाने नहीं होते, दे क्वाइटली सिट विद अस लाइक मेमोरीज। कुछ लिरिक्स कभी किसी इंसान की याद दिला देती है, तो कभी कोई म्यूजिक किसी पुराने याद की, और कभी बस यूं ही दिल को अच्छा महसूस करवा देते हैं ये सॉन्ग्स, है ना। वैसे आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9 आकाशवाणी हैदराबाद, शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब। वेल डियर लिसनर्स, आप चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, सुबह की जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस, ट्रैफिक, एंडलेस टू डू लिस्ट, बट इन द मिडल ऑफ ऑल दिस आई रियली होप यू आर टेकिंग अ फ्यू मोमेंट्स आउट फॉर योर सेल्फ टू, बिकॉज समटाइम्स यू नो लाइफ गेट्स सो बिजी दैट वी कीप रनिंग विदाउट इवन आस्किंग आर सेल्फ्स एम आई रियली ओके। इसीलिए कभी कभी बस 2 मिनट रुक कर खुद से बात करना भी ज़रूरी होता है, थोड़ा फ्रेश एयर या बस अपनी फेवरेट सॉन्ग को सुन लेना। एंड लेट मी टेल यू, दीज लिटिल पॉजेस डू मैटर। याद रखिए, जिंदगी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट फीलिंग अलाइव इन द मिडल ऑफ ऑल द केओस। और हाँ, एक छोटी सी बात याद रखिएगा, दैट यू डोंट ऑलवेज हैव टू हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट। समटाइम्स जस्ट शोइंग अप, ट्राइंग योर बेस्ट एंड मूविंग फॉरवर्ड वन स्टेप एट अ टाइम, दैट इटसेल्फ इज इनफ। सो वेयरएवर यू आर राइट नाउ, एट वर्क और एट होम मैनेजिंग अ फ्यू थिंग्स और मे बी जस्ट टेकिंग अ लिटिल ब्रेक, Here's a gentle reminder for you. Be kind to yourself too. क्योंकि जिस तरह आप सबका ख्याल रखते हैं ना, थोड़ा सा ख्याल खुद का भी रखिए। एंड येस, ऑन दैट ब्यूटिफुल नोट, लेट्स मेक दिस डे अ लिटिल लाइटर, अ लिटिल हैप्पियर एंड अ लॉट मोर म्यूजिकल। स्टे ट्यून्ड बिकॉज सम लवली सॉन्ग्स आर लाइंड अप जस्ट फॉर यू। एंड सॉन्ग्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ सॉन्ग्स तो मेरी पसंद के हैं ही, और साथ में मेरे साथ आज ऐश्वर्या भी हैं स्टूडियो में, तो इनकी पसंद के भी कुछ सॉन्ग्स हैं। एंड हमारे जो लिसनर्स हैं उनकी भी अगर कोई रिक्वेस्ट है तो मैं ट्राई करूँगी प्ले करने के लिए। वैसे लिसनर्स, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 4023234822। एंड हमारे कुछ लिसनर्स अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ सरवर अली जी हैं जिन्होंने अपने रेडियो सेट की फ़ोटो भेजी हुई है, एक वीडियो भेजा हुआ है, रेडियो पे गाना बज रहा है, एंड ऑफकोर्स बहुत ही सुंदर सा वीडियो, एंड लिखते गुड आफ्टरनून। तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देन हमारे साथ यहाँ पर हैं महेश फ्रॉम बालानगर दक्षिण टी कॉर्नर, ये लिखते हैं हाई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून निशा जी। तो इन्होंने एक साथ ही गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून लिख दिया है, क्योंकि आई थिंक हो सकता है गुड मॉर्निंग में मैसेज जब मॉर्निंग होगी तब लिखा होगा और अभी आफ्टरनून में पढ़ा जा रहा है, तो इन्होंने सोचा चलो गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून दोनों एक साथ लिख देते हैं। एंड ये कहते हैं कि सुबह से जो भी सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं, बातें हो रही, वो इन्हें अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू सो मच। एंड एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है, तन्हा दिल बाई शान। एक्चुअली आई थिंक ये रिक्वेस्ट पहले भी एक दिन आई थी और उस दिन मैं नहीं प्ले कर पाई थी शायद, तो मैं ट्राई करूँगी। एंड देन हमारे साथ यहाँ पर अशोक जी जुड़े हुए हैं जो लिखते हैं कि आप से जब हमारी यारी हो गई, दुनिया और भी हमारी प्यारी हो गई, इससे पहले हम किसी भी चीज़ के आदि न थे, पर अब आपको याद करने की बीमारी हो गई। वाह क्या बात है, और ऐसी बीमारी सबको लग जाए तो क्या ही बात है ना, मतलब कि कोई ना कोई स्पेशल सबकी लाइफ में हो तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अकेले तन्हा ज़िंदगी बिता रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने स्मार्टफोन के साथ ही खुश हैं, है कि नहीं, कुछ लोग हैं जो सेल्फ लव का नारा लगाते हुए सेल्फिश हो गए, है कि नहीं। तो आई थिंक सबके पास एक अगर साथी हो, दैट वुड बी वेरी गुड। एंड यस, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए चलेंगे एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ, सुनते रहिए, ये है फिल्म रेनबो 101.9। एंड ये जो सॉन्ग है ये है फ्रॉम द फिल्म केदारनाथ। और इससे पहले कि हम इस सॉन्ग को सुने, कुछ छोटे छोटे संदेश हैं जो आपको सुनवाना चाहेंगे, सुनते रहिए, ये है फिल्म रेनबो 101.9।

काफ़ी प्यारा सा सॉन्ग था ना। दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग इज़ फ्रॉम द फिल्म केदारनाथ। वैसे यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत प्लेलिस्ट मुझे लगता है मैंने बना कर रख ली है। एंड ऑनेस्टली दोस्तों, एक बात तो है, हमें अपनी पसंदीदा चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना कितना अच्छा लगता है ना। मे बी अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, सम मेमोरेबल फोटोग्राफ्स, और इवन अ स्मॉल सर्कल ऑफ पॉजिटिव एंड गुड पीपल। जहाँ कहीं अच्छे लोग दिखते हैं, वहाँ हम एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं ना, अपने दोस्त बना लेते हैं उन्हीं छोटे से ग्रुप में। एंड उनके साथ रहना, उन्हें संभाल कर रखना, इट जस्ट फील्स नाइस, राइट? लेकिन एक बात जो है वो ये है जो मुझे ख़राब लगती है, कि जो गंदी या ख़राब चीज़ें होती है ना, उन्हें तो कोई भी कलेक्ट करके नहीं रखना चाहता, बिकॉज़ ऑब्वियसली दे आर नॉट गुड फॉर अस। तो फिर एक सवाल ये भी है कि जब हमें खुद गंदगी पसंद नहीं है, देन व्हाई डू वी ट्रीट नेचर लाइक दिस? बिना सोचे समझे कहीं भी वेस्ट फेंक देना, और फिर वहीं कचरा जमा होते रहता है ना। मतलब अच्छी चीज़ें इकट्ठा करना अच्छी चीज़ है, लेकिन जो गंदी चीज़ें उन्हें क्यों इकट्ठा करना? एंड आई एम श्योर नेचर को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा, है कि नहीं? बट सैडली हम में से कुछ लोग आज भी ऐसा करते हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं, मे बी माउंटेन्स, बीचेस, फॉरेस्ट या रिलीजियस प्लेसेस, और वापस आते वक्त अपना वेस्ट वहीं छोड़ आते हैं। कहीं पर डस्टबिन नहीं मिला, क्या फ़र्क पड़ता है ना, बाहर फेंक दो, इतनी सारी जगह खाली तो है कि नहीं? और वैसे ही एक कचरा, दूसरा, तीसरा, चौथा इकट्ठा होते होते एक पूरा कचरे का ढेर क्रिएट हो जाता है। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि इन दिनों बहुत सारे लोग केदारनाथ टेम्पल दर्शन के लिए जा रहे हैं, और कुछ जगहों पर वेस्ट मैनेजमेंट एक कंसर्न बनता जा रहा है। तो ऐसी पवित्र जगहों को साफ रखना सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस एक्चुअली। एंड ऐसी जगहों पे जैसे कहीं माउंटेन्स पे, या फिर जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, हम केदारनाथ दर्शन के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ एक तो हम ट्रैकिंग करके इतने ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पर जल्दी जाना भी पॉसिबल नहीं होता है लोगों का, है ना? अगर कोई जा रहा है तो वो जल्दी जल्दी वापस आने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली लोग उतने ऊपर जाकर साफ़ सफाई करना रोज़ प्रेफर नहीं करते, तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम वहाँ पर कचरा ना फेंके जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी बहुत कम हो लोगों के लिए। जैसे बहुत सारे बीचेस पर हम जाते हैं जहाँ पर कम लोग आते हैं, एंड देन दे ऑल्सो समटाइम्स, मतलब हम मजबूर रहते हैं, कचरा फेंक कर आ जाते हैं। तो स्पेशली जब भीड़ इतनी ज़्यादा हो कि कहीं भी आप एक कचरा फेंके और कचरे का ढेर लग जाए एक एक करते करते, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम अपनी इस आदत को बदलें और छोटी सी शुरुआत करें, डस्टबिन यूज़ करें, प्लास्टिक कम करें, और नेचर को थोड़ा सा प्यार वापस दें, सो दैट नेचर कैन कंटिन्यू टेकिंग केयर ऑफ अस टू। तो चलिए, इस छोटे से थॉट के साथ लेट्स मूव अहेड एंड एन्जॉय अनदर ब्यूटिफुल ट्रैक। और क्योंकि यहाँ पर एक फरमाइश आई हुई है, तो चलिए उसी को पूरा करते हैं। दिस इज़ तन्हा दिल बाई शान, एंड आई थिंक इट्स रिक्वेस्टेड बाई महेश फ्रॉम बालानगर। तो चलिए सुनते हैं।

दोपहर के 1:01 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ और मैं उनिशा आपके साथ। और जी हाँ, दोपहर के 1:01 यानी कि समय हो चला है हेलो रेनबो का। तो हेलो रेनबो में आप हमसे जुड़ पाएंगे, हमसे ढेर सारी बातें कर पाएंगे। और आपको बता दें कि हमसे जुड़ने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो है 0402323 0030, 0402323 4821 और 0402970 4715। और इससे पहले की बातों का सिलसिला शुरू हो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जिस पे मैं जानना चाहूँगी कि आपकी राय क्या है। मैं पूछना चाहूँगी उस एक बदलाव के बारे में जो आने वाले दिनों में आप अपने अंदर देखना चाहोगे। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में बदलाव तो ज़रूरी होते हैं, ये सबका मानना है ना। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि कभी कभी हम खुद में भी कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ बेहतर, कुछ बेटर, कुछ पॉजिटिव है कि नहीं। कभी लगता है कि थोड़ा कम गुस्सा करें, कभी लगता है ओवर थिंकिंग कम हो जाए। कुछ लोग अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी रिलेशनशिप्स को और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो जी हाँ, वो एक चीज़ क्या है जो आप फील करते हैं कि अगर बदल जाए तो ज़िंदगी थोड़ी और खूबसूरत हो सकती है? शायद ज़्यादा पॉजिटिव बनना, खुद को प्रायोरिटी देना, स्ट्रेस कम करना, या फिर किसी डर को पीछे छोड़ देना। तो फ़ोन उठाइए और हमें कॉल करिए, बताइए उस एक बदलाव के बारे में जो आप अपने अंदर देखना चाहोगे और क्यों। हो सकता है आपकी बात किसी और के दिल को भी छू जाए। तो जी हाँ, इंतज़ार रहेगा आपके कॉल्स का। तो जुड़िए हमसे और बात करिए दिल खोलकर। नंबर्स हैं 0402323 0030, 0402323 4821 और 0402970 4715। तो रहेगा आपके कॉल्स का इंतज़ार और तब तक आपको लिए चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ। सुनते रहिए।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: दोपहर के 1:10 दोस्तों, आप जुड़े हुए आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ, और ये समय यही कहता है कि अब वक्त है आपसे जुड़ने का, आपसे ढेर सारी बातें करने का। और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं वो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है 0402323000, 0402323482 और 0402970417 और एक छोटा सा सवाल मैंने आप

0: आपसे पूछा है, और वो सवाल ये है कि एक बदलाव जो आप अपने अंदर आने वाले दिनों में देखना चाहोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरी बात कर ले तो मुझे कोई भी काम जब मैं करती हूँ ना, तो उसमें कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं लैग करती है, तो मैं कंसिस्टेंट होना चाहती हूँ किसी भी काम को करते समय। तो वैसे ही बहुत सारे बदलाव हम भी अपने अंदर चाहते हैं कि नहीं? एंड यस, उन्हीं कुछ बदलावों के बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो एक एक करके आप हमसे जुड़िए, एंड देखते हैं हमारे जो फर्स्ट कॉलर है वो कौन है। हेलो रेनबो।
1: गुड आफ्टरनून मैडम जी।
0: वेरी वेरी गुड आफ्टरनून श्रीनिवास जी, कैसे हैं आप?
1: मैडम, बहुत दिन के बाद आपसे बात कर रही हूँ, ऐसा दिख रहा है मैडम मेरे
0: हाँ
1: को।
0: जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल
1: ये
0: बिल्कुल।
1: धूप काले में कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम मेरे को, तो
0: धूप,
1: बहुत ही बाहर वैसी धूप है,
0: हाँ
1: घर में भी वैसी धूप है, पूरे दीवारा पूरे गर्म हो गए, सो है
0: ओके।
1: ठंडा पानी
0: बट एक
1: नाम
0: चीज,
1: नहीं है।
0: हाँ जी, एक चीज़ राहत दे सकती है, और वो ये है कि मॉनसून स्टार्ट होने वाला है, तो एक वीक आप वेट कीजिए, एंड देन आई थिंक थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी इस गर्मी से।
1: आपका टारगेट क्या है मैडम?
0: एक चेंज जो आप अपने अंदर आने वाले दिनों में देखना चाहोगे।
1: तो लास्टिंग स्टार्ट करके 4 महीने हो रहे मैडम
0: ओके।
1: हमारे पार्क में, तो उसके अंदर क्या है, कैसा भी 21 जनवरी को, 21 जून को तो कैसा भी योगा डे आ रही है,
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उसके लिए हम लोग, आप तो जून ही छोना मैडम, कैसा भी
0: हाँ।
1: अब 15 दिन 20 दिन हो गए कि नहीं, कि उसके अंदर हम पूरा पूरा गुम हो जाते हैं। तो ये बार क्या है, नॉट लेस देन 150 पीपल वी आर एक्सपेक्टिंग इन दी पार्क।
0: ओके, नाइस, दैट्स
1: हाँ,
0: नाइस।
1: तो दैट्स वे हम लोग थोड़ा कलेक्शन भी करना चाह रहे हैं, तो कलेक्शन करके उनको ब्रेकफास्ट देना बोल के, ब्रेकफास्ट
0: ओके।
1: प्लस ये जो है सो अपने को बटर मिल्क है ना मैडम, तो
0: हाँ जी ओके।
1: बटर मिल्क देना बोल के सोच रहे हैं हम। तो ऑलरेडी पानी का तो पहले से स्टार्ट हो गया, जो है एक 5 कैंस डेली लाके लगा देता है बच्चा, तो उसके लिए वो कंटिन्यूटी चल रही है।
0: ओके।
1: और ऊपर से ये उसके साथ साथ में योगा डे के दिन कंपलसरी
0: ओके।
1: ब्रेकफास्ट प्लस बटर मिल्क देना बोल के सोच रहे मैडम,
0: ओके ओके,
1: उसके
0: चलेगा।
1: अंदर ही पीछे ऊपर चल रही है, कैसा करेंगे क्या करेंगे, उनके दोस्तों से पूछ पूछ के ये कर
0: चलिए,
1: रहे हैं,
0: अच्छी बात है।
1: क्योंकि जरा अच्छा पैमाने भी करेंगे बोल के, क्योंकि
0: ओके।
1: जमखाना वो ये डालना पड़ता, कैसा भी पहले 2-3 डाल रहे थे, अब 5-6 तो भी मिनिमम होना पड़ता,
0: ओके।
1: तो इसके लिए खर्चे के वास्ते पूरा ये करना बोल के सोच रहे। तो
0: चलिए, अच्छी बात है।
1: दैट्स वे बिकॉज आई एम ओनली द पर्सन टू टेक दी इन चार्ज ऑफ ऑल दिस थिंग,
0: ओके ओके
1: तो हम सबको बोल के करा
0: ओके।
1: के लोगों को बुला के उन लोगों को 21 जून को ये कर देते हैं।
0: ओके ओके।
1: योगा ट्रेनर अपने घर के पास ही है, तो यू विल ऑल डू ऑल दोस थिंग्स, वो उनका वो हिसाब वो पार्ट के अंदर वो करता भी देख लेते हैं। तो
0: ओके।
1: अपने को जो है सो हमारा काम क्या है, ये इकोनॉमी का पूरा देखने का कंपलसरी है, वो करके कैसा भी कर
0: चलिए,
1: देंगे
0: अच्छा
1: बोल के
0: चेंज
1: सोच
0: आप
1: रहे
0: लाने
1: हैं।
0: की कोशिश कर रहे हैं, सो
1: थैंक
0: कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर
1: यू
0: कॉलिंग।
1: मच,
0: थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू
1: अगर
0: थैंक यू।
1: टाइम मिले तो आप भी आ जाइए हमारे पास।
0: हाँ श्योर, थैंक यू सो मच।
1: ओके
0: ओके
1: मच, थैंक
0: ओके,
1: यू मच,
0: थैंक यू थैंक
1: थैंक
0: यू
1: यू वेरी मच मच।
0: थैंक यू। तो जी हाँ, ये थे श्रीनिवास जी, और काफ़ी सारे चेंजेस ये लाना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें कुछ अच्छे बदलाव आ पाए। तो जी हाँ, आज का क्वेश्चन यही है कि एक बदलाव जो आप अपने अंदर देखना चाहते हैं, और किस लिए वो बदलाव आपको अपने अंदर देखना है, तो कॉल कीजिए। हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो है 0402323-0030, 0402323-4821, और 0402970-4715। और अगर आप उनमें से हैं जो मैसेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं कॉल से, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 4023234822। तो जी हाँ, रहेगा आपके कॉल्स का इंतज़ार, एंड यस, आप अगर हमें चाहें तो मैसेजेस भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए, जब तक मैं अपने नेक्स्ट कॉलर से जुड़ती हूँ, तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग।

0: दोपहर के 1:22 दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ, एंड सिलसिला जारी है हेलो रेनबो का, जहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज एक छोटा सा सवाल जो आपसे मैंने पूछा है वो ये है कि आने वाले दिनों में आप अपने अंदर क्या बदलाव देखना चाहेंगे, एक चेंज जो आप अपने अंदर देखना चाहते हैं और क्यों। तो जी हाँ, कॉल करने के लिए हमारे जो नंबर्स हैं वो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी। नंबर्स है 0402323481, 0402323000 और 0402970471। तो जी हाँ, हमारे कॉलर्स से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कौन है। हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून, आदाब निशा जी।
0: गुड आफ्टरनून शेर खान जी, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ है और आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे।
0: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल खैरियत। एंड आज का आई होप कि आपने सवाल सुना होगा।
1: जी जी जी, बहुत प्यारा सवाल है, सभी सुनने वाले भाई बहनों को, दोस्तों को, आपको मेरा प्यार भरा सलाम
0: जी।
1: और अल्लाह आप सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे। और हम सब में कुछ ना कुछ बदलाव करने की, हमको हमेशा कोशिश करने की हिदायत दे। जी निशा जी, मैं अपने अंदर ये चेंजेस देखना चाहूँगा, ये बदलाव करना चाहूँगा। वैसे तो मैं हमेशा कोशिशों में लगा रहता हूँ।
0: जी जी,
1: मतलब जिंदगी एक बहुत अनमोल चीज है और ये जिंदगी में जो हालात आते हैं, जो चढ़ उतार आते हैं, जो घरेलू फैमिली मैटर बाहर के या जो भी है, जैसे आप जानते हैं मैं ब्लाइंड हूँ, तो बहुत सारे हालातों से मैं बचपने से अभी तक गुजर रहा हूँ। तो मुझे बहुत कुछ जिंदगी से सीखने भी मिला और बहुत अच्छा भी लगता है ये सारा ये सीख हासिल करके। यानी जितने भी गम खुशी, जो भी सुख दुख जो भी आते रहते हैं, ये फैमिली वालों का जो हमारे साथ व्यवहार होता है, ये भी ये तकलीफ भी होती है, लेकिन एक सीख मिल रही है एक जिंदगी से हमको, और ये जिंदगी का एक हिस्सा है बोल के ये समझ में आती है। ये बात
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा भी लगता है। और मैं ये सीखना चाहूंगा, ये बदलाव करना चाहूंगा अपने अंदर, कि मैं और भी फिजिकली, दिमागी तौर पे, दिली तौर पे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनता रहूं, बन जाऊं मैं
0: जी,
1: और भी इन हालातों से लड़ाई करने के लिए,
0: जो कि बहुत अच्छी बात है
1: जी। और दुआएं करता रहूं बस अल्लाह के, दुनियादारी की और ये जो भी फालतू चीजें हैं इसकी फिक्र ना करूं मैं। इसमें थोड़ी बहुत फिक्र तो होती, अब ऐसा हो गया, क्या होगा, ये होगा, ये फिक्रों से बरी होके बस अल्लाह की इबादत करूं, सबके लिए दुआएं करूं, खुद के लिए भी दुआएं करूं, क्योंकि एक दिन हमको ये दुनिया छोड़ के जाना
0: बिल्कुल,
1: ही है। तो
0: बिल्कुल,
1: फिर
0: बिल्कुल,
1: फिकर ना करूं मैं,
0: हाँ,
1: काम
0: बिल्कुल,
1: वाली फिकर करूं,
0: हाँ
1: काम
0: जी,
1: वाला काम करूं और दुआएं करूं और अपने अंदर स्ट्रांग होने वाली कोशिश हमें ऐसा

0: करता रहूँ, ये चेंजेस मेरे अंदर और भी आना चाहिए और मैं और भी मजबूत होना चाहिए। मैं खुद ये कोशिश में हूँ और अल्लाह से दुआ है मेरी।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है और जानकर बहुत अच्छा लगा, जो चेंज
0: जी
1: आप
0: नहीं सर,
1: लाना
0: एक
1: चाहते
0: सॉन्ग
1: हैं।
0: की रिक्वेस्ट थी, अगर मिल जाए तो।
1: मुझे लगता है मुझे पता है वो सॉन्ग, आप बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने माँ को देखा है,
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: ऐसा सॉन्ग है
0: नहीं
1: जी।
0: है सिस्टम में, वो नहीं मिल पा रहा है क्या?
1: मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है।
0: जी उपहार फिल्म है,
1: हाँ
0: अगर
1: जी।
0: वो ना मिले तो फिर एक जीने की राह फिल्म है, मोहम्मद रफी साहब का सॉन्ग है, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए।
1: ओके ओके, मैं कोशिश
0: अगर
1: करती
0: वो
1: हूँ।
0: मिल जाए माँ वाला सॉन्ग तो बहुत अच्छा है, वो बहुत दिनों पहले प्ले हुआ था, हो
1: ओके
0: सकता है
1: ओके,
0: शायद अंदर होगा, आपको भी
1: उपहार
0: पता नहीं।
1: उपहार फिल्म से।
0: हाँ जी,
1: ओके, मैं कोशिश करती हूँ।
0: जी निशा जी, बहुत शुक्रिया, आप इतना वक्त दिए, अल्लाह
1: थैंक
0: आपको
1: यू, थैंक
0: खुश
1: यू सो
0: रखे,
1: मच।
0: आभार।
1: ओके ओके, थैंक यू। तो जी हाँ, ये थे शेर खान जी, और आपसे एक सिंपल सा सवाल कि आने वाले दिनों में या फिर कभी भी, है ना, आप कौन सा चेंज अपने अंदर देखना चाहोगे, एक बदलाव जो ज़रूरी है कि आप अपने अंदर करें और क्यों, ये भी मैं जानना चाहूँगी। तो हमारे लिसनर्स जब तक हमसे जुड़ते हैं, चलिए चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ, और उससे पहले एक छोटा सा संदेश सुनते रहिए। ये है FM रेनबो 101.9।

0: हेलो
1: राधे राधे।
0: राधे राधे मुरली जी, वो कहते ना देर आए दुरुस्त आए, तो कब से आवाज़ नहीं आ रही थी जी। बताइए कैसे आप।
1: बहुत ही बढ़िया हूँ मोनिशा जी, आप कैसे हैं?
0: एक्सेलेंट।
1: और निशा जी को भी ऐश्वर्या जय,
0: हाँ
1: ऐश्वर्या
0: ऐश्वर्या है हमारे
1: राज्य
0: साथ।
1: ओनली ऐश्वर्या, ऐश्वर्या जी को भी राधे राधे।
0: ऐश्वर्या जी आपको भी राधे राधे कह रहे, तो ऐश्वर्या जी आपसे बात करना चाहेंगी।
1: ठीक है फिर तो, फिर ఐశ్వర్య గారు ఎలా ఉన్నారు?
0: బాగున్నాను సార్, మీరెలా ఉన్నారు?
1: బాగున్నానండి, మీరు చాలా బాగుండాలని నేను
0: థ్యాంక్ యూ సార్.
1: ఆశిస్తున్నాను. అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే, మార్పు మార్పు ఒక విషయంలో రావద్దు అనుకుంటున్నానండి. నా విషయంలో
0: ఓకే.
1: మార్పు అనేది రావద్దు. ఒకటి ఏంటంటే, మన ప్రతి ఒక్కరిది ఏజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, సరే అది పెరగనీయండి. కాకపోతే ఏంటంటే, ఆలోచన ధోరణిలో పట మనకు స్వార్థపూరితమైన ఒకరి మీద ఈర్ష్య లాంటివి లేకుండా ఉండాలనేది, ఆ మార్పు మాత్రం రావద్దు అనేది నా ఆలోచన అండి, అంతే. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఎవరినైనా కూడా మనం మనలాగా చూసుకోవాలంతే. మనం మనం మనని మనని ఎంత ప్రేమించుకుంటామో ఎదురున్న వాళ్ళని కూడా అదే విధంగా ప్రేమతో చూడాలి, అభిమానించాలి అనేది నాది. అంతేనండి, హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డే బోత్ ఆఫ్ యూ.
0: థ్యాంక్ యూ సార్. మనం సెల్ఫిష్
1: థ్యాంక్ యూ.
0: అవ్వకుండా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా అని ఆయన కోరుకుంటున్నారు. చాలా మంచి ఆలోచన సార్ మీది.
1: ఓకేనండి,
0: థ్యాంక్
1: థ్యాంక్
0: యూ
1: యూ
0: ఫర్
1: వెరీ మచ్.
0: కాలింగ్.
1: థ్యాంక్ యూ.
0: तो जी हाँ, ये थे मुरली जी हमारे साथ, एंड आई थिंक हमारे कुछ और भी लिसनर्स हमसे जुड़ना चाहते हैं, और फिलहाल व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ कुछ लिसनर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं. यहाँ पर अशोक जी, सरवर अली जी, महेश जी जुड़े हुए हैं, एंड देन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अश्विन जी फ्रॉम कोटी कुशल मार्केट, जो लिखते हैं जय श्री कृष्णा निशा जी केम छो. तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, जय श्री कृष्णा, एंड ऐश्वर्या को भी जय श्री कृष्णा, और सभी सुनने वाले को भी. तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड वेल, इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज भेजा है, बहुत ही लंबा चौड़ा मैसेज है, तो मैं उसको ज़रूर शामिल करूंगी थोड़ी देर बाद. एंड यस, कुछ कॉलर्स हमसे अभी जुड़ना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं कौन है वो.
1: नमस्ते
0: हेलो रेनबो.
1: आरजे निशा मैडम,
0: नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है.
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही का करम है, फजल है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है. और कैसी चल रही है आपकी दोपहर?
1: अच्छा, बहुत अच्छी चल रही है, गुड चल रही है,
0: ओके
1: चल रही है।
0: ओके.
1: और
0: एफएम
1: अभी
0: रेनबो से जुड़े हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक.
1: जी
0: ओके,
1: हाँ जी हाँ जी हाँ,
0: तो
1: जिंदगी
0: बताइए.
1: में जो तब्दीली है, मेरी उम्र है 60 साल की,
0: हाँ जी.
1: और उस टाइम 60 साल में मैं एक कम तालीम से गुजार लिया,
0: ओ अच्छा
1: मगर अब तालीम की खास जरूरत हो गई।
0: अच्छा अब जरूरत है.
1: अब अभी भी नहीं, अभी पहले भी थी, मगर अब और ज्यादा हो गई, क्योंकि अब लाइसेंस निकालना भी है तो
0: हाँ
1: आपको
0: हाँ
1: सेकंड क्लास पास करना
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल.
1: जगहों पे तब्दीली अब जिंदगी में सख्त तरीके से एक नाफिज हो गई, इसको
0: वाह क्या बात है. एंड कहीं
1: फॉलो
0: ना,
1: करना पड़ता
0: हाँ जी, और
1: जी।
0: टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है तो कहीं ना कहीं जरूरी है कुछ ना
1: जी
0: कुछ
1: हाँ,
0: सीखते
1: कंप्यूटर
0: रहना.
1: सिस्टम है, लोग जो कोई मीटिंग भी चला रहे हैं तो उसको सिस्टोमेटिक उसका व्हाट्सएप पे आ जा रहा है और
0: बिल्कुल
1: चलाना
0: बिल्कुल.
1: पड़ता है। किलोमीटर भी अगर गाड़ी का देख रहे हैं तो उसमें व्हाट्सएप पे आ जा रहा है, तो ये तब्दीली आदमी को फॉलो करना पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: अब हम जैसे पुराने लोग को उसमें उतरना है, अब उसमें मुकम्मल करके तब्दीली ये जरूरी है, फर्ज आइन हो गया ये तब्दीली हमारी जमाने के साथ, मौसम के साथ, गाड़ियों के साथ चलने के लिए लाजिम हो गया, और उसको फॉलो करते हुए मुकम्मल जिंदगी करना है। सही
0: बिल्कुल.
1: कहना था, मैं
0: चलिए
1: एक
0: बहुत
1: थोड़ा सा
0: बहुत
1: गाने का
0: शुक्रिया.
1: मुखड़ा गाना चाह रहा हूँ।
0: हाँ जी बताइए. हाँ गाइए.
1: हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो
0: वाह क्या
1: सही
0: बात है.
1: कहना था, थैंक
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया.
1: यू।
0: ओके थैंक यू सो मच. तो जी हाँ, अपने आप को स्किल्स के साथ अपडेट करते रहना, ये बहुत अच्छा चेंज जो हम अपने अंदर ला सकते हैं, अप स्किलिंग करना. बहुत सारे लोग हैं जो किसी एक स्किल पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, यू नो, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चेंज है. वेल, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर व्हाट्सएप पर भी हमारे पास कुछ मैसेजेस है, तो यहाँ पर अश्विन जी ने एक काफ़ी बेहतरीन मैसेज भेजा है, जो कहीं ना कहीं जो खूबसूरत औरतें हमारी जिंदगी में हैं, है ना, इनक्रेडिबल वुमेन इन आर

लाइव्स, तो उनको बयां करता है। इन्होंने लिखा है कि जब मैंने जन्म लिया वहाँ एक नारी थी जिसने मुझे थाम लिया, मेरी माँ। बचपन में जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, एक नारी वहाँ मेरा ध्यान रखने और मेरे साथ खेलने के लिए मौजूद थी, मेरी बहन। जब मैं स्कूल गया, एक नारी ने मुझे पढ़ने और सीखने में मदद की, मेरी शिक्षिका। जब भी मैं जीवन से निराश और हताश हुआ और जब भी हारा, तब एक नारी ने मुझे संभाला, मेरी महिला मित्र। और जब मुझे सहयोग, साथी और प्रेम की आवश्यकता हुई, तब एक नारी हमेशा मेरे साथ थी, मेरी पत्नी। और जब भी मैं जीवन में कठोर हुआ, तब एक नारी ने मेरे व्यवहार को नरम कर दिया, मेरी बेटी। और जब मैं मरूंगा, तब भी एक नारी मुझे अपने गोद में समा लेगी, धरती माँ। तो यदि आप पुरुष हैं तो हर नारी का सम्मान करें और

0: Okay, and as I can see, the next RJ is already here. वेंकी यहाँ पर स्टूडियो में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वेंकी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स से?
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9।
0: जी हाँ, इन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल में स्टेशन आइडेंटिफिकेशन दे दिया और वही कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह रहा है दैट बैंकी इज़ हियर, ही इज़ बैक। वेल, यहाँ पर इस सेगमेंट को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी, और उससे पहले एक मैसेज हमारे पास आया हुआ है, उसे जल्दी जल्दी पढ़ना चाहूँगी। तो ये हैं दीपू, एंड ही इज़ राइटिंग कि हाय निशा जी, मैं दीपू फ्रॉम हैदराबाद, फाइनली यू आर हियर, कैसे हो? तो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप भी उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एंड लिखते हैं, आई थिंक, मुझे लगता है ये एक अप्रिसिएशन पोस्ट जैसा भी है। आपका म्यूज़िक सिलेक्शन हमेशा दिल को बहुत सुकून देता है, उम्मीद करता हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ होंगी। वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच। और लिखते हैं कि दोस्त, आज बस इतना सा ख्याल आया कि चेंज ही जिंदगी की असली नियति है। वाह, वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं और हम भी, पर अक्सर हम दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, जबकि शायद ज़रूरत खुद को थोड़ा सा बदलने की होती है। यस, ऑफ कोर्स। और लिखते हैं कि क्योंकि जब इंसान अपनी सोच और अपने अंदाज़ में एक अच्छा बदलाव लाता है, तो उसकी छोटी सी पॉजिटिविटी भी दुनिया को बेहतर बना देती है, और इसी बात को माइकल जैक्सन भी मानते थे। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, टेक अ लुक एट योर सेल्फ एंड मेक द चेंज। कभी कभी, क्योंकि दोस्त, खुद में किया गया एक छोटा सा बदलाव ही सबसे बड़ा बदलाव बन जाता है। और एक रिक्वेस्ट, एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है इन्होंने, सुहानी रात ढल चुकी। तो जी हाँ, मैं आई थिंक लास्ट सॉन्ग फॉर दिस सेगमेंट, आई ट्राई टू प्ले दिस सॉन्ग। एंड यस, आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ इसी वायदे के साथ कि होगी आपसे फिर एक बार मुलाकात, और उस अगली मुलाकात तक अपना रखिए अच्छा सा ख्याल, अपने अपनों का भी रखिए अच्छा सा ख्याल, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सुनते रहिए एफएम रेनबो 101.9। और अब मैं तो चलती हूँ, लेकिन वेंकी यहाँ पर हैं, जो आपको इस दोपहर की जर्नी से निकलकर शाम तक की जर्नी में आपका साथ निभाने वाले हैं। सो सुनते रहिए।

0: స్టూడియో క్లాక్ లో సమయం 4:03 అయింది. ఇప్పుడు వినండి సందేశ్ టు సోల్జర్స్.
1: और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षत मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सके.
2: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है? क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
1: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है. जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि. जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. वेस्ट को वेस्ट ना समझे बल्कि उसको हम रिसोर्स समझे. जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं. जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा.
2: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
1: जी बिल्कुल. आज जैसा आप जानते हैं, पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया. सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया. गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही 4 तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट. इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई एनजीओ से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके. इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं. तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि इस कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट. जो ड्राई वेस्ट है, जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं. इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं, जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं. और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं. इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए, जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है, उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है. सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी हैं यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है. और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं.
2: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें. सर, क्या यह अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए, आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
1: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा ना जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल, जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो, क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना. आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना. इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पर भी हम काफी काम कर रहे हैं. अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखे हैं, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस और में जा रहे हैं. सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है, जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है. मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो GRE4 कंप्लायंट है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जा रहा है. वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 1 मेगावाट का

0: सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड एसटीपी प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइकलिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
0: जी यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: साहब हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स एमओडी आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसके अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोजिट सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिया, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मेरे प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबिक्स में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के वेट बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन वेस्ट को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद

0: तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इससे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
0: इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
1: साहब, एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
0: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
1: सर, आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
2: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है, और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
1: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायोमेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज,
0: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
1: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेज की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी, हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है?
0: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं, इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
1: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाएं?
0: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं, इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
1: और सर, इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं?
0: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
1: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है, उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान निछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज्ड कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल कर इसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो केन्स रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए, कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है, हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स लिविंग एरियाज कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होके हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोतल, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है जैसे टेबल, चेयर, बेंच, कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है जो दर्शाती है कि

0: आर्मी न खाली रेगिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी, मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है? अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
0: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
1: और सर, क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए?
0: जी हाँ बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
1: बस हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए?
0: जी ये जो मार्क 80 केजी का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 केजी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 केजी वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
1: एब्सोल्युटली 80 केजी वेस्ट, आप सोचिए 80 किलो वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना कितनी अहम चीज है, ये कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
0: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं जिसमें आप टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
1: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच सर।

0: तो इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं, डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं, और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो की है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
3: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है

0: ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसीज के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाया
1: जाता है। बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सीलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहां पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सीलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा, साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुल्ली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुल्ली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफलमैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में

0: हम पहले से बात कर चुके हैं और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस व्हिच मींस डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर स्वागत है शो में, प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
1: जय हिंद। आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
0: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
1: देखिए अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
2: बता रहे हैं राइफल मैन दिनेश कुमार।
1: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अफसर जवान, वो अपने बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सब जहां पर डोनेट करते हैं।
2: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
3: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें 4 फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग, CCTV रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयड होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहां से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
0: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
3: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में है, हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा। ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है, और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम

0: हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
1: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

यहाँ से कुछ ना कुछ मालूमात लेकर जाएंगे और लुत्फ़ानंदोज़ होकर जाएंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz। सामाइन, नया रंग प्रोग्राम का आगाज हुआ चाहता है, उससे पहले आइए सुनते हैं एक अच्छी बात। दोस्तों, नेकी और मोहब्बत वो खुशबू हैं जो इंसान के जाने के बाद भी दिलों में बाकी रहती है। अगर हम अपने लहजे को नर्म और अपने अमल को रोशन रखें तो हमारी यादें दूसरों के दिलों में चिराग की तरह जलती रहेंगी। ये ख्याल हमें याद दिलाता है कि असल सरमाया दौलत या मुकाम नहीं, बल्कि वो किरदार है जो दूसरों के दिलों में देर पा खुशबू छोड़ जाता है। नर्म लहजा, नेक अमल जिंदगी की असल खुशबू हैं। तो अपने अंदर ये खुशबू को बरकरार रखिए, कायम रखिए। यही मैसेज के साथ सामाइन, आइए शुरुआत करते हैं नारंग प्रोग्राम की।

नए रंग सुनने वाले सभी सामाइन की खिदमत में हमारा पुरखलोस आदाब। सामाइन, आज के नए रंग में हस्बे दस्तूर आगाज पर हरफे ताबिंदा पेश होगा। पेशकश होगी डॉक्टर मोहम्मद अजमतुल्ला खान की। हरफ़े ताबिंदा के बाद मुशायरा पेश होगा, जिसमें निज़ामाबाद के शोरा इकराम हिस्सा लेंगे, जिनके नाम हैं जनाब जमील निज़ामाबादी, सैयद रियाज तन्हा, सैयद जलाल अकबर, जनाब अशफाक आसिफी और जनाब शरीफ अथर। ज़रूर सुनिएगा ये मुशायरा, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप इस मुशायरे को सुनकर ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। गीत सुरीले गाता जा, इस सिलसिले के तहत कुछ मेरी पसंद के फिल्मी गीत नैरंग में आप सुन सकते हैं। आखिर में पयाम-ए-शब के साथ नैरंग प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचेगा।

0: तो चलिए सामाइन, नया रंग प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सुनते हैं हर्फ़े ताबिंदा। तहरीर व पेशकश है जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमतुल्लाह खान की।
1: इरादे तो हर एक दिल में पलते हैं, इरादे तो हर एक दिल में पलते हैं, अमल वाले ही कामयाब निकलते हैं। अमल, एक्शन, एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी फेल या हरकत या किसी काम की अंजाम दही को ज़ाहिर करता है। ये किसी चीज़ के होने या किसी चीज़ को करने के अमल को बयान करता है। अमल सुकून या आराम के बरक्स सरगर्मी या काम की हालत है। अमल किसी काम के करने या किसी वाक़े के रोनुमा होने को कहते हैं। मिसाल के तौर पे चलना, लिखना या सोचना एक अमल है। किसी मकसद को हासिल करने के लिए किए गए इकदाम को कार्रवाई कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी मसले को हल करने के लिए एक मनसूबा बंदी करना। किसी भी किस्म की जहनी या जिस्मानी सरगर्मी को सरगर्मी कहते हैं। अमल की अहमियत, अमल ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। ये हमें जानदार और फ़ाल रखने की निशानदेही करता है। अमल के ज़रिए ही हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी और तरक्की हासिल कर सकते हैं। अमल के ज़रिए हम मसाइल को हल कर सकते हैं, अपने अहदाफ तक पहुँच सकते हैं। अमल के ज़रिए ही हम नई चीज़ें तख्लीक कर सकते हैं और जिद्दत पैदा कर सकते हैं। अमल ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जो हमें आगे बढ़ने और तरक्की करने में मदद करता है। इंसान की ज़िंदगी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है वो अमल है। लफ्ज़ अमल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लगवी माने हैं काम कर।

0: और दूसरों के साथ हुस्न सुलूक करें, क्योंकि ये दुनिया आखिरत में कामयाबी सिर्फ और सिर्फ नेक आमाल से ही हासिल की जा सकती है। बकौले शायर, शऊर सिर्फ इरादे से कुछ नहीं होता, शऊर सिर्फ इरादे से कुछ नहीं होता, अमल शर्त है, इरादे सभी करते हैं।
1: अमल शर्त है, इरादे तो सभी करते हैं। जी हाँ सामाइन, अमल पर हरफ ताबिंदा अभी आपने समाप्त किया। तहरीर और पेशकश थी डॉक्टर मोहम्मद अजमतुल्ला खान की है। दोस्तों, अच्छा अमल वो है जो दिल को सुकून दे और दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। ये सिर्फ इबादत या बड़े कारनामे नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी नेकियां भी हैं। किसी को मुस्कुरा कर देखना, भूखे को खाना खिलाना, कमजोर का सहारा बनना, माफ कर देना चाहे दिल को तकलीफ पहुंची हो, इल्म और मोहब्बत बांटना, असल में अच्छा अमल वो चिराग है जो न सिर्फ अपने रास्ते को रोशन करता है, बल्कि दूसरों के अंधेरों को भी उजाला देता है। सामाइन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz। प्रोग्राम नए रंग में आइए अब सुनते हैं मुशायरा। इस मुशायरे में हिस्सा लिया है निजामाबाद के शोराए इकराम ने, जिनके नाम हैं जनाब जमील निजामाबादी, सैयद रियाज तन्हा, जनाब सैयद जलाल अकबर, अशफाक आसिफी और जनाब शरीफ अथर ने। लीजिए समाप्त कीजिए मुशायरा।
2: ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद की जानिब से निज़ामाबाद के शुरा कराम पर मुश्तमिल ये मुशायरा उर्दू सामाइन की खिदमत में पेश किया जा रहा है। मैं जमील निज़ामाबादी आपसे मुखातिब हूँ। मोहतरम सामाइन, मैं निज़ामाबाद का अदबी तारीफ़ आपको पेश करूँ कि उर्दू शेर अदब की दुनिया में निज़ामाबाद एक नुमाया मुकाम का हामिल है। आज़ादी के बाद ही से यहाँ की अदबी सरगर्मियाँ मिसाली रही हैं। हैदराबाद शहर के बाद उर्दू दुनिया में निज़ामाबाद को एक ख़ास अहमियत हासिल रही है। यहाँ कई अदबी अंजुमनें मुख्तलिफ अदवार में उर्दू की तरक्की और फ़रोग़ के लिए अपनी शमें रोशन किए रही हैं। माहाना तरही व गैर तरही मुशायरों का अहतमाम और इन मुशायरों में मुकामी व बैरूनी शुरा की शिरकत यहाँ के शेरी माहौल को खुशगवार बनाती रही है। बुजुर्ग शुरा के साथ साथ जवां साल और नौउम्र व मुब्तदी शुरा भी हर दौर में इन मुशायरों का हिस्सा रहे हैं। माहाना शेरी अदबी महफिलों के अलावा कुलीन सतहों के मुशायरे भी यहाँ मुनक़िद होते रहे हैं। उर्दू के नामवर शुरा इन मुशायरों में शरीक होकर उन्हें चार चांद लगाते रहे हैं। पिछली नसफ सदी में जिन अहम और नामवर शुरा ने निज़ामाबाद के मुशायरों में शरीक होकर इन्हें खुशगवार बनाया है, उनमें हज़रत जिगर मुराद आबादी, अर्श मलसियानी, कुमार बारा बनकवी, कैफ़ी आज़मी, राज इलाहाबादी, बेकल उत्साही, मखदूम मुहियुद्दीन, शाहस्तम कन्नत, मलिकुश शोरा औज याकूबी, मुनव्वर राना, वसीम बरेलवी, राहत इंदौरी, मेराज फैज़ाबादी और इनके साथ साथ दीगर कई शुरा यहाँ के मुशायरों का हिस्सा बने रहे हैं। निज़ामाबाद ज़िले के शुरा के आज के इस मुशायरे में असर हाजिर के नुमाइंदा शुरा का मुरस्सा कलाम आप समाप्त फरमाएंगे और सामाइन आप हजरात को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि निज़ामाबाद का अदबी और शेरी मीयार यकीनन बढ़ा हुआ है। आज के इस मुशायरे में जो शुरा शरीक हो रहे हैं, इनमें जनाब सैयद रियाज तन्हा, जनाब जलाल अकबर, जनाब अशफाक असफी, जनाब शरीफ अथर और जमील निज़ामाबादी शामिल हैं। मैं मुशायरे के आगाज़ के लिए निज़ामाबाद के एक और मोतबर शायर, एक और मशहूर शायर, जवांसाल शायर जिसे निज़ामाबाद में बड़ी मसरतों से सुना जाता है, मैं जनाब शरीफ अथर को दावत कलाम देता हूँ और ये शेर से उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ कि रहोगी सामने मेरे तो कुछ बईद नहीं,
3: अरे वाह,
2: अच्छा रहोगी
3: रहोगी सामने
2: सामने
3: मेरे
2: मेरे
3: तो
2: तो
3: कुछ
2: कुछ
3: बईद
2: बईद
3: नहीं।
2: नहीं, मैं शेर कहने लगूं और मीर हो जाऊं। रहोगी सामने
3: क्या
2: मेरे तो कुछ
3: वाह
2: बईद
3: बईद
2: नहीं,
3: नहीं,
2: मैं
3: शेर
2: शेर
3: कहने
2: कहने लगूं
3: लगूं
2: और
3: और
2: मीर
3: मीर
2: हो
3: हो
2: जाऊं,
3: जाऊं।
2: जनाब शरीफ अतहर।
3: वाह, इरशाद अली
4: सबसे
3: शरीफ
4: पहले
3: अतहर
4: एक दो शेर ताज़ा शेर हैं कि
3: इरशाद।
5: बिल्कुल
4: जिस हाल में चाहा था

0: उसी हाल में हम हैं।
1: जिस हाल में चाहा था
0: जिस हाल में चाहा था
1: उसी हाल में हम
0: उसी
1: हैं।
0: हाल में हम हैं, अंबर में अगर तुम हो तो पाताल में हम।
2: वाह, अरे क्या बात है दोस्त,
0: कि जिस हाल में चाहा था
3: उसी
0: उस
3: हाल
0: हाल
3: में,
0: में चाहा था
1: उसी
0: उसी हाल में
1: हाल
0: हम हैं,
3: अंबर में
0: अंबर में अगर तुम हो
1: तो
0: तो पाताल में
2: पाताल
0: हम
2: में हम
0: हैं।
2: है।
0: पहचान का इतना सा हवाला है हमारा,
3: अच्छा
0: पहचान का इतना सा हवाला है हमारा, ऐ अर्ज़े वतन तेरे खतो खाल में हम हैं।
1: बहुत अच्छा
3: वाह
1: बहुत अच्छा,
2: अरे वाह
0: पहचान का
2: वाह
0: इतना सा हवाला
2: वाह,
0: है
2: क्या बात
0: हमारा,
2: है दोस्त,
3: है अर्ज़े
0: पहचान
3: वतन,
0: का इतना सा हवाला है
2: हाय
0: हमारा,
2: हाय
0: ऐ अर्ज़े वतन तेरे खतो खाल में हम हैं। और दोस्तों यूं है कि ये
2: अच्छा
0: कब लफ्जों का मेला चाहती है,
3: अच्छा ये
0: ये
1: कब
0: कब लफ्जों का
2: लफ्जों का
0: मेला
2: मेला
0: चाहती
2: चाहती है।
0: है, गजल कोई हो लहजा चाहती है।
2: बेशक,
3: बहुत
2: वाह वाह
3: अच्छा,
2: वाह
0: ये
2: वाह,
0: कब
2: अरे वाह वाह
0: लफ्जों
2: वाह
0: का
3: का
0: मेला
3: मेला,
0: चाहती
3: वाह
0: है,
2: वाह
0: ये
2: वाह वाह
0: कब
2: वाह,
0: लफ्जों
3: गजल,
0: का मेला
3: वाह
0: चाहती
3: वाह वाह
0: है,
3: वाह वाह वाह,
0: गजल कोई हो लहजा चाहती
2: लहजा
0: है,
2: चाहती है,
0: कहाँ तुम खुद को मनवाने चले हो,
3: कहाँ तुम
0: कहाँ
3: खुद
0: तुम खुद को मनवाने चले हो, मियाँ पहचान चेहरा चाहती है।
3: बहुत
2: बहुत
3: वाह
0: कहाँ
3: बहुत
0: तुम खुद को मनवाने चले
2: वाह
0: हो,
2: वाह,
0: मियाँ पहचान
3: चेहरा
0: चेहरा
3: चाहती
0: चाहती
3: है।
0: है। गजल एक दादा गजल के और दो शेर देखें कि ये
2: अच्छा
0: रोशनी है कि साया समझ नहीं आता,
1: ये रोशनी है कि
3: अच्छा
1: साया
3: समझ
0: ये
3: नहीं
0: रोशनी
3: कि
0: है
3: साया
0: कि
3: समझ,
0: साया समझ नहीं आता, ये धूप छाँव का झगड़ा समझ नहीं आता,
1: बहुत
2: अरे
1: अच्छा
2: क्या
1: बहुत
0: ये
1: अच्छा
0: रोशनी
1: बहुत,
0: है
3: कि
0: कि
3: साया
0: साया समझ
3: साया
0: नहीं आता,
3: ये
0: ये
3: धूप
0: धूप छाँव
3: छाँव
0: का
2: झगड़ा,
0: झगड़ा समझ नहीं आता, ये शहर शहर है अपना समझ तो आता है,
1: बहुत
3: अच्छा
1: बहुत
0: ये शहर शहर
1: शहर
0: है
1: है
0: अपना
1: अपना
0: समझ
1: समझ
0: तो
1: तो
0: आता
1: आता,
0: है, यहाँ पे कौन है अपना समझ नहीं
2: अरे वाह
3: आता,
1: बहुत
0: ये शहर
2: वाह
0: शहर है अपना समझ तो आता
3: अच्छा,
0: है,
3: यहाँ वाह वाह
0: ये
3: कौन है
0: शहर
3: आप,
0: शहर है अपना
3: समझ तो
0: समझ तो
3: आता है,
0: आता है, यहाँ पे कौन है अपना समझ नहीं
2: बहुत
0: आता,
1: बहुत
2: अच्छा
1: बहुत
2: बाबा,
1: अच्छा
0: वो खाक समझेगा अथर जुबान गालिब की, अच्छा
3: बेशक
0: वो
1: बेशक,
0: खाक समझेगा अथर
3: जबान गालिब
0: जुबान गालिब की, वो
2: की,
0: जिसको मीर का लहजा समझ नहीं
2: अरे वाह
3: वाह
2: अरे क्या
3: वाह
2: शेर कह
3: क्या
2: दिया
3: बात
2: है,
0: वो खाक समझेगा अथर
2: क्या
0: जुबान
2: बात
0: गालिब
2: का शरीफ
0: की,
2: अतर,
3: जिसको
2: वाह
3: मीर का
0: वाह
3: लहजा
0: वो खाक
3: समझ नहीं,
0: समझेगा अथर जुबान गालिब की,
3: जिसको
0: मीर का लहजा
2: मीर
0: समझ
2: का
0: नहीं
2: लहजा समझ
0: आता,
2: नहीं
0: वो
2: आता,
0: जिसको मीर
2: बहुत
0: का
2: खूबसूरत
0: लहजा समझ
2: बहुत
0: नहीं
2: खूबसूरत
0: आता। तो
2: वाह
0: गजल का मतलब, मुकम्मल गजल का मतलब यूं है कि
2: अच्छा
0: बीच मझधार में तिनके के सहारे हो जाएं,
1: बीच
3: अच्छा
1: मझधार
0: बीच
1: में
0: मझधार में
3: तिनके
0: तिनके
3: के
0: के
3: सहारे,
0: सहारे हो जाएं, इससे अच्छा है कि लहरों के हवाले हो जाएं,
1: वाह
3: वाह
1: बहुत
3: बहुत
1: अच्छा
2: बहुत
1: बहुत अच्छे
2: अच्छे
1: बहुत अच्छे,
0: बीच मझधार में तिनके के
3: तिनके
0: सहारे हो
3: के
0: जाएं,
3: इससे
0: इससे
3: अच्छा
0: अच्छा है कि लहरों के हवाले हो जाएं, राह दुश्वार है और दूर बहुत है मंजिल,
1: क्या कहें,
2: वाह
0: राह दुश्वार है
3: और
0: और
3: दूर
0: दूर बहुत है मंजिल, जिनको चलना नहीं वो लोग किनारे हो जाएं,
1: बहुत अच्छे
0: वाह
1: बहुत अच्छे
0: राह दुश्वार
3: वाह
0: है
3: वाह वाह
0: और
3: वाह,
0: दूर
3: दूर
0: बहुत
3: है
0: है मंजिल,
1: बहुत अच्छा कहा बहुत
0: जिनको
2: अच्छा,
0: चलना नहीं वो लोग किनारे हो
2: किनारे हो
0: जाएं,
2: जाए,
0: हमको छू लो हमें नजदीक से देखो लोगो,
1: क्या बात है अच्छा,
0: हमको छू लो हमें
3: हमें
0: नजदीक से देखो लोगो, कल को हम भी कहीं आकाश के तारे हो जाएं,
3: वाह
0: हमको
3: वाह
0: छू लो हमें नजदीक से देखो लोगो,
1: वाह वाह कल को हम
0: हमको छू
2: भी, बहुत
0: लो
2: खूब दोस्त,
0: हमें नजदीक से देखो लोगो, कल को हम भी कहीं आकाश के तारे हो जाएं,
1: वाह वाह
0: जुल्मते शब तेरे पाले हैं ये सच है लेकिन,
2: अच्छा वाह,
0: जुल्मते शब तेरे
3: पाले
0: पाले
3: हैं
0: हैं ये सच है लेकिन, क्या अजब है ये अंधेरे ही उजाले हो जाएं,
2: बहुत खूबसूरत
0: जुल्मते
3: वाह
0: शब तेरे
3: वाह वाह
0: पाले
3: वाह
0: हैं
3: वाह
0: ये
3: वाह
0: सच
3: वाह
0: है लेकिन,
3: वाह वाह वाह वाह,
0: क्या अजब है ये अंधेरे ही उजाले हो जाएं,
2: बहुत खूब
0: और अपने लहजे को तमाजत से बचाना अथर,
2: अच्छा, अपने
0: अपने
2: लहजे,
0: लहजे
2: अरे
0: को
2: क्या बात है दोस्त,
0: तमाजत से
2: तमाजत से
0: बचाना
2: बचाना अथर,
0: अथर, अपने लहजे को तमाजत से बचाना अथर, फूल से लफ्ज किसी दिन न शरारे हो जाएं,
3: वाह
0: अपने
3: क्या
0: लहजे
3: बात
0: को
2: बहुत
0: तमाजत
2: खूब
0: से बचाना अथर,
1: वाह
3: वाह,
1: वाह
3: फूल
0: फूल से
3: से
0: लफ्ज
2: लफ्ज,
0: किसी दिन न शरारे हो जाएं।
2: वाह इशाद,
0: गजल का
1: हाँ
0: पता
1: दूसरे
0: यूं है
3: बात
0: कि
3: अता फरमाइए अता फरमाइए,
0: इखलास को सिक्कों से तो आका नहीं करते,
3: अच्छा
0: इखलास को
1: सिक्कों से,
0: सिक्कों से तो आका नहीं करते, ये आप जो करते हैं कुछ अच्छा नहीं
2: अरे
0: करते,
2: वाह वाह
0: इखलास को सिक्कों से तो आका नहीं करते,
2: वाह
0: ये आप जो करते हैं कुछ अच्छा नहीं करते, दुनिया कोई जुगनू कोई तितली तो नहीं है,
1: बेशक
0: दुनिया
1: बेशक,
0: कोई जुगनू
3: जुगनू
0: कोई तितली तो नहीं है, परछाई है परछाई का पीछा करते
2: अरे
3: वाह
2: वाह
3: वाह
1: क्या बात है,
0: दुनिया
2: क्या
0: कोई
2: बात है
0: जुगनू कोई
2: दोस्त,
0: तितली तो नहीं
3: बहुत अच्छा
0: है,
3: परछाई
1: वाह
3: है, परछाई
0: दुनिया
2: वाह
0: कोई
2: वाह
0: जुगनू कोई तितली तो नहीं है,
1: वाह
0: परछाई है

0: परछाई का
1: परछाई
0: पीछा
1: का
0: नहीं
1: पीछा नहीं
0: करते, तुम
1: करते।
0: रेत की तहरीर हो, इतना तो रहे याद।
1: बहुत
0: अच्छा, तुम
1: अच्छा
0: रेत की तहरीर हो,
1: इतना तो रहे
0: इतना तो
1: यार।
0: रहे याद, आंधी से किसी बात पे झगड़ा नहीं
1: अरे
0: करते।
1: वाह
0: तुम
1: वाह
0: रेत
1: वाह,
0: की
1: क्या
0: तहरीर
1: बात है
0: हो,
1: दोस्त, इतना
0: रेत की तहरीर हो, इतना तो
1: तो
0: रहे याद, आंधी से किसी बात पे झगड़ा नहीं
1: रहे
0: करते।
1: यार। वाह
0: आंधी से किसी बात पे झगड़ा
1: झगड़ा
0: नहीं
1: नहीं।
0: करते, मंजर कोई आगे का दिखाऊं इन्हें लेकिन,
1: अच्छा मंजर कोई
0: मंजर
1: आगे
0: कोई
1: का।
0: आगे
1: अरे
0: का दिखाऊं इन्हें लेकिन, बच्चे मेरी आंखों पे भरोसा नहीं
1: वाह
0: करते।
1: वाह
0: क्या
1: वाह वाह,
0: कहने,
1: क्या बात कही ये
0: मंजर कोई
1: दोस्त।
0: आगे का दिखाऊं इन्हें लेकिन,
1: बच्चे
0: मंजर
1: मेरी आंखों पे
0: कोई
1: भरोसा
0: आगे का
1: नहीं
0: दिखाऊं इन्हें
1: करते। वाह
0: लेकिन,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: बच्चे
1: फिर पढ़
0: मेरी
1: दीजिए
0: आंखों
1: दोस्त,
0: पे
1: बच्चे
0: भरोसा
1: मेरी
0: नहीं
1: आंखों पे
0: कर,
1: भरोसा
0: मंजर कोई
1: नहीं करते।
0: आगे
1: क्या बात है
0: का
1: दोस्त,
0: दिखाऊं इन्हें लेकिन,
1: अलमिया
0: वाह
1: है
0: वाह
1: नई
0: वाह,
1: नस्ल का।
0: बच्चे
1: वाह
0: मेरी
1: वाह
0: आंखों पे भरोसा नहीं
1: बहुत
0: करते,
1: अच्छा शेर, बहुत अच्छा
0: बच्चे
1: शेर।
0: मेरी आंखों पे भरोसा नहीं करते, छन जाते
1: हाँ
0: हैं दीवार के रोजन से भी अथर।
1: जी,
0: छन
1: अच्छा
0: छन जाते हैं
1: दीवार पे।
0: दीवार के रोजन से भी अथर, सूरज है दरीचों ही पे तकिया नहीं करते।
1: वाह वाह
0: बहुत खूब,
1: वाह,
0: सूरज
1: क्या
0: है
1: बात है।
0: दरीचों
1: अरे
0: ही पे तकिया
1: क्या
0: नहीं
1: शेर
0: करते।
1: कहा है,
0: दुनिया
1: सुना
0: सुना
1: ये
0: ये
1: दुनिया
0: दुनिया
1: नहीं।
0: कोई जुगनू कोई तितली तो नहीं
1: बहुत
0: है,
1: अच्छा शेर, बहुत अच्छा।
0: दुनिया कोई जुगनू कोई तितली तो नहीं
1: वाह
0: है,
1: वाह
0: परछाई है, परछाई
1: परछाई,
0: का पीछा नहीं
1: बहुत
0: करते।
1: खूब,
0: तुम रेत की तहरीर हो, इतना
1: इतना
0: तो
1: तो
0: रहे
1: रहे यार।
0: याद, आंधी से किसी बात पे झगड़ा नहीं करते।
1: बात कुछ कुछ
0: आंधी
1: और
0: से किसी
1: और कुछ
0: बात
1: अच्छा,
0: पे
1: रहमत
0: कुछ अच्छा
1: ना
0: और
1: हो दोस्त,
0: सुनाइए,
1: शरीफ अतर साहब सुनाइए, कुछ और सुनाइए।
0: देखें कि माना के कभी कोई नवाजिश नहीं करता,
1: अच्छा माना
0: अच्छा
1: कि कभी
0: माना
1: कोई कभी,
0: के कभी कोई नवाजिश नहीं करता, क्या कम है यही बात के साजिश नहीं करता।
1: अरे वाह
0: बहुत
1: वाह
0: अच्छा,
1: वाह वाह, बहुत
0: माना
1: अच्छे,
0: के
1: क्या
0: कभी
1: शेर कह
0: कोई
1: दिया। वाह वाह वाह वाह,
0: नवाजिश नहीं
1: हाय
0: करता,
1: हाय मुबारक
0: मुबारक
1: वाह,
0: हो, माना के
1: सुभान
0: कभी कोई नवाजिश नहीं करता,
1: अल्लाह, वाह
0: क्या
1: कहने क्या कहने,
0: कम है यही बात के साजिश नहीं करता।
1: वाह क्या कहने।
0: मैं चाहता हूं उससे कोई झूठ न बोलूं, मैं
1: हाँ
0: चाहता
1: मैं
0: हूं
1: चाहता
0: उससे
1: हूँ
0: कोई
1: कोई झूठ ना
0: झूठ न
1: बोलूं। सुनिए
0: बोलूं, उसको
1: अच्छा,
0: ये शिकायत के सताइश नहीं
1: अरे
0: करता।
1: क्या बात
0: मैं
1: है, क्या
0: चाहता हूं
1: बात है,
0: उससे कोई
1: वाह
0: झूठ न बोलूं,
1: वाह वाह
0: उसको
1: वाह,
0: ये शिकायत के
1: सताइश नहीं
0: सताइश नहीं
1: करता।
0: करता, उसको ये
1: वाह
0: शिकायत के सताइश नहीं करता।
1: वाह
0: और दो
1: वाह,
0: शेर यूं है कि तमाम रास्ते
1: मजदूत थे
0: मजदूद थे जिधर जाते,
1: जिधर जाते हैं। अच्छा
0: तमाम
1: अच्छा
0: रास्ते मजदूद
1: मजदूर
0: थे
1: थे
0: जिधर
1: जिधर
0: जाते, जो
1: जाते
0: मुंतजर कोई होता तो हम भी घर जाते। तमाम रास्ते
1: हैं, क्या बात
0: मजदूद
1: है,
0: थे
1: जिधर जाते
0: जिधर
1: हैं।
0: जाते, जो मुंतजर कोई होता तो हम भी घर जाते।
1: जी जी
0: तुम्हारे शहर के जितने थे दर पराए थे,
1: तुम्हारे शहर
0: तुम्हारे
1: के,
0: शहर
1: वाह
0: के
1: वाह
0: जितने थे दर पराए थे, हम अपने हाथ की दस्तक लिए किधर जाते।
1: क्या कहने, क्या
0: तुम्हारे
1: कहने,
0: शहर के जितने थे दर पराए थे,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: हम
1: हम अपने
0: अपने
1: हाथ
0: हाथ
1: की
0: की
1: दस्तक
0: दस्तक
1: लिए
0: लिए
1: दस्तक
0: किधर
1: क्या लिए
0: जाते।
1: किधर
0: हाथ की
1: जाते।
0: दस्तक का जवाब
1: तमाम
0: नहीं,
1: रास्ते
0: मजदूत थे जिधर जाते,
1: वाह
0: जो मुंतजर कोई होता तो हम भी घर जाते।
1: बहुत खूब, मोहतरम सामईन,
0: वाह
1: जनाबे शरीफ अथर आपके सामने गजल सरा थे, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत शेर, बहुत ही खूबसूरत पैराए में आपके सामने पेश किए हैं। मैं जनाब अथर को इन अच्छे अशार पर आप सबकी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ।
0: वाह वाह वाह, शुक्रिया
2: हाज़रीन गिरामी,
1: बहुत खूब।
2: जनाब अथर के बाद मुशायरे के उस शायर की बारी आती है जिसने इस मुशायरे को मुशायरा बनाने में अपनी निज़ामत के ज़रिए और निज़ामाबाद के पस मंज़र के ज़रिए उर्दू हवाले के ज़रिए आप तक एक मैसेज दिया और कामयाबी से इस मुशायरे को यहाँ तक चलाया। मैं उस शायर के हवाले से ये बात भी कहूँगा कि वो शायर निज़ामाबाद के लिए, पूरी रियासत आंध्र प्रदेश के लिए किसी एतबार से मोहताज तारुफ नहीं है। वो शायर बहैसियत शायर निज़ामाबाद में एक कहो ना मस्त शायर, सीनियर शायर की हैसियत रखता है और आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपने कलाम के ज़रिए, अपने पर्चे के ज़रिए जाना पहचाना जाता है और इसकी गज़लों में बांकपन है और गज़ल में वो एहसास है जिसको सुनने के बाद शायरी का शऊर नई नस्लों में बेदार होने का अंदेशा
1: सही बात,
2: पैदा हो सकता
1: बेशक
2: है,
1: बेशक,
2: इस बात की तमानियत दी जा सकती है। आइए मैं उस शायर को आवाज़ देता हूँ जिसे अब तक आप निज़ामत के हवाले से सुन रहे थे, मेरी मुराद है मोहतरम जमील निज़ामाबादी जो आपके सामने गज़ल सरा है।
1: इरशाद
2: मोहतरम सामईन,
1: इरशाद,
2: दो शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ, देखिए कि

0: शादी अली
1: जब तेरे टूट के मिलने की अदा याद आई।
0: क्या बात है,
1: जब तेरे टूट के मिलने की अदा याद आई।
2: क्या कहने,
1: मेरा टूटा हुआ दिल और जरा टूट गया।
3: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: जब तेरे टूट के मिलने की अदा याद आई, मेरा टूटा हुआ दिल और जरा टूट गया। और हाय वो जाम जिसे मुंह से लगाया भी न था, हाथ से छूट गया, छन से गिरा
0: टूट गया।
3: वाह वाह वाह।
1: हाय वो जाम जिसे मुंह से लगाया भी न था, हाथ से छूट गया, छन से गिरा टूट गया। और जब तेरे टूटने और दोषे देख लीजिए के नक्श यादों का मेरे दिल में उभारा ना करो। नक्श यादों का मेरे दिल में उभारा ना करो, और तुम मुझे प्यार के लहजे में पुकारा।

0: हाथ से छूट गया, छंग से गिरा,
1: टूट
0: टूट गया।
1: गया। अरे वाह वाह वाह
2: वाह वाह वाह।
0: हाय वो जाम
3: जिसे मुंह से
0: हाय वो जाम
3: लगाया
0: जिसे मुंह से लगाया भी न था, हाथ से छूट गया, छंग
1: से
0: गिरा, टूट गया।
1: बहुत खूब।
0: और जब तेरे टूटने और दोषे देख लीजिए कि नक्श यादों का मेरे दिल में उभारा ना करो। नक्श यादों का मेरे दिल में उभारा ना करो और तुम मुझे प्यार के लहजे में पुकारा ना करो। नक्श यादों का मेरे दिल पे उभारा ना करो और तुम मुझे प्यार के लहजे में पुकारा ना करो। हौसला है तो बढ़ो और लड़ो शोलों से।
2: अच्छा।
0: हौसला है तो बढ़ो और लड़ो शोलों से। दूर से जलते नशे मन का नजारा ना करो। और जिंदगी काट दो तुम धूप में खुददारी की।
2: अच्छा।
0: जिंदगी काट दो तुम धूप में खुददारी की और भीख की छांव में एक पल भी गुजारा ना करो। जिंदगी काट दो तुम धूप में खुददारी की। जिंदगी काट दो तुम धूप में खुददारी की और भीख की छांव में एक पल भी गुजारा ना करो। और झुक के मिलना तो तखाजा है शराफत का जमील। झुक के मिलना तो तखाजा है शराफत का जमील और दब के मिलना किसी कीमत पे गवारा ना।
2: वाह
1: वाह।
0: झुक के मिलना तो तखाजा है शराफत का जमील।
2: वाह।
0: दब के मिलना किसी कीमत पे गवारा ना करो। और एक गजल, और यकीनन ये गजल ही है, गजल के अंदाज में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए कि एहसान उनके देखिए मुझ पर तमाम रात।
2: अच्छा।
0: एहसान उनके देखिए मुझ पर तमाम रात और मुझको नवाजते रहे जी भर तमाम रात। एहसान उनके देखिए मुझ पर तमाम रात और मुझको नवाजते रहे जी भर तमाम रात। और लगती रही थी चोट सी दिल पर तमाम रात। लगती रही थी चोट सी दिल पर तमाम रात और कुछ टूटता रहा मेरे अंदर
2: तमाम रात।
0: लगती रही थी चोट सी अंदर तमाम रात, कुछ टूटता रहा मेरे अंदर तमाम रात। और शेर देखिए कि घेरे हुए था, एक मतलब और है कि घेरे हुए था दर्द का लश्कर
2: तमाम रात।
0: घेरे हुए था दर्द का लश्कर तमाम रात और लड़ता रहा मैं बन के सिकंदर
2: तमाम रात।
0: घेरे हुए था दर्द का लश्कर तमाम रात। घेरे हुए था दर्द का लश्कर तमाम रात और लड़ता रहा मैं बन के सिकंदर
2: तमाम रात।
0: और ये गजल का शेर के सोता रहा मैं चैन से पहलू ये यार में। सोता रहा मैं चैन से पहलू ये यार में और जागता था मेरा मुखद्दर
2: तमाम।
1: अरे क्या बात है।
0: सोता रहा था चैन से पहलू ये यार में। सोता रहा था चैन से पहलू ये यार में और जागता था मेरा मुखद्दर तमाम रात। और दिल दिल था कि उनको ढूंढता फिरता था रात भर।
2: अच्छा।
0: दिल था कि उनको ढूंढता फिरता था रात भर और नजरें तराशती रही पैकर
2: तमाम रात।
1: वाह।
0: दिल था कि उनको ढूंढता फिरता था रात भर, नजरें तराशती रहीं पैकर तमाम रात। और खुशबू तेरे बदन की दिलो जाम में बस गई।
2: अच्छा।
0: खुशबू तेरे बदन की दिलो जाम में बस गई और बिस्तर बना हुआ था गुलेतर तमाम रात। खुशबू तेरे बदन की दिलो जाम में बस गई। खुशबू तेरे बदन की दिलो जाम में बस गई और बिस्तर बना हुआ था गुलेतर तमाम रात। और ये शेर के वो याद थी तेरी, तेरा गम था कि तेरा प्यार।
1: अच्छा।
0: वो याद थी तेरी, तेरा गम था कि तेरा प्यार। सीने पे था मेरे कोई पत्थर।
1: अरे वाह
2: वाह।
0: वो याद थी तेरी, तेरा गम था कि तेरा प्यार और सीने पे था मेरे कोई पत्थर तमाम रात। और अपना बनाने जब वो अपना बनाने जब भी वो आएंगे मेरे घर।
2: अच्छा।
0: अपना बनाने जब भी वो आएंगे मेरे घर जश्न चरागा होगा मेरे घर
1: तमाम। हाय हाय हाय।
0: अपना बनाने जब भी वो आएंगे मेरे घर। अपना बनाने जब भी वो आएंगे मेरे घर और जश्न चरागा होगा मेरे घर तमाम रात। और एक नात का शेर दरमियान में आ गया, देखिए कि जिस शब की इब्तिदा मैं करूं उनके नाम से।
2: अच्छा।
0: जिस शब की इब्तिदा मैं करूं उनके नाम

0: से रहमत बरसती होगी मेरे घर तमाम।
1: अरे वाह,
0: जिस शब्द की इब्तिदा मैं करूं उनके नाम से, जिस शब्द की इब्तिदा मैं करूं उनके नाम से, और रहमत बरसती होगी मेरे घर तमाम रात। और इस गजल का मख्ता यूं है कि अपनी सुनाई मेरी सुनी और फिर जमील।
1: अच्छा,
0: अपनी सुनाई मेरी सुनी और फिर जमील, रोते रहे वो मुझसे लिपट कर तमाम। अपनी सुनाई मेरी सुनी और फिर जमील,
2: रात का अखदा किया जमील।
0: अपनी सुनाई मेरी सुनी और फिर जमील, रोते रहे वो मुझसे लिपट कर तमाम रात। मुतरम सामाइन, ये तो गजल थी। ये गजल के चंद शेर और देख लीजिए कि नफस नफस में है मेरे बसी हुई खुशबू।
1: अच्छा,
0: नफस नफस में है मेरे बसी हुई खुशबू, और बनी हुई है तेरे दम से जिंदगी खुशबू।
1: वाह,
0: नफस नफस में मेरे, नफस नफस में है मेरे बसी हुई खुशबू, और बनी हुई है तेरे दम से जिंदगी खुशबू। और ये शेर के तुझे मैं फूल कहूँ या कहूँ मैं खौसे खजा, तुझे मैं फूल कहूँ या कहूँ मैं खौसे खजा, कभी तो रंगो नजाकत है और कभी खुशबू। कभी तू रंगो नजाकत है और कभी खुशबू, तुझे मैं फूल कहूँ या कहूँ मैं खौसे खजा, कभी तो रंगो नजाकत है और कभी खुशबू। और चमन चमन में जिसे मैं तलाश करता हूँ, चमन चमन में जिसे मैं तलाश करता हूँ, तुम्हारी जुल्फे मुअत्तर में है वही खुशबू। चमन चमन में जिसे, चमन चमन में जिसे मैं तलाश करता हूँ, तुम्हारी जुल्फे मुअत्तर में है वही खुशबू, और तुम्हारे जिक्र से मेरी जबां महकती है।
2: अच्छा,
0: शेर सुनिए कि तुम्हारे जिक्र से मेरी जबां महकती है, और तुम्हारी याद से दिल में है चांदनी खुशबू।
2: अरे वाह,
1: वाह वाह,
0: तुम्हारे जिक्र से मेरी जबां महकती है, और तुम्हारी याद से दिल में है चांदनी खुशबू। और कसम कसम खुदा की तू हर दम है मेरी सांसों में।
2: अच्छा,
0: कसम खुदा की तू हर दम है मेरी सांसों में, मेरे बदन से है लिपटी हुई तेरी खुशबू। कसम खुदा की तू हर दम है मेरी सांसों में, कसम खुदा की तू हर दम है मेरी सांसों में, और मेरे बदन से है लिपटी हुई तेरी खुशबू। और तेरी नजर में है क्या क्या बताऊं मैं कैसे, तेरी नजर में है क्या क्या बताऊं मैं कैसे, अभी है रंगे हिना और है अभी खुशबू। तेरी नजर में है क्या क्या बताऊं मैं कैसे, अभी है रंगे हिना और है अभी खुशबू, अभी है रंगे हिना और है अभी खुशबू, कभी है मुश्क कभी ऊद है कभी लोबा, कभी है मुश्क कभी ऊद है कभी लोबा, तेरी वफा में महकती है संदली खुशबू। तेरी वफा में महकती है संदली खुशबू, कभी अभी है कभी है मुश्क कभी ऊद है कभी लोबा, और तेरी वफा में महकती है संदली खुशबू, और हवा के झोंके तुझे अपने साथ लाते हैं। हवा के झोंके तुझे अपने साथ लाते हैं, हवा जो आई वतन से तो आ गई खुशबू। हवा के झोंके तुझे अपने साथ लाते हैं, हवा के झोंके तुझे अपने साथ लाते हैं, हवा जो आई वतन से तो आ गई खुशबू। और न जाने क्यों हुई बुग़्ज़ो हसद से आलूदा, न जाने क्यों हुई बुग़्ज़ो हसद से आलूदा, ये कल की बात है होती थी दोस्ती खुशबू। न जाने क्यों हुई बुग़्ज़ो हसद से आलूदा, न जाने क्यों हुई बुग़्ज़ो हसद से आलूदा, ये कल की बात है होती थी दोस्ती खुशबू। और मतला जो है नात शरीफ का है कि देखिए, उठी थी मक्के से फैली है सारे आलम में।
1: अच्छा,
0: उठी थी मक्के से और फैली है सारे आलम में, जमील देखो मदीने में है वही खुशबू। उठी थी मक्के से फैली है सारे आलम में, जमील देखो मदीने में है वही खुशबू। अगर आप
2: बोलता है जो रदीफ है ना, ये बड़ी प्यारी गजल है, अगर ज़हमत ना हो तो चंद अशआर
0: सुन लीजिए। आपकी ख्वाहिश है कि मैं उस गजल पढूं। बड़े मीठे सुरों में बोलता है, बड़े मीठे सुरों में बोलता है, तो रस कानों में जैसे घोलता है। बड़े मीठे सुरों में बोलता है तो रस कानों में जैसे घोलता है, और सुना करता हूँ मैं भी अपने दिल से, सुना करता हूँ मैं भी अपने दिल से, वो जब आंखों से अपनी बोलता है। सुना करता हूँ मैं भी अपने दिल से, सुना करता हूँ मैं भी अपने दिल से, वो जब आंखों से अपनी बोलता है, वो जब आंखों से अपनी बोलता

0: है और हवा करती है उसका खैर मकदम।
1: अच्छा,
0: हवा
1: करती है उसका
0: हवा
1: खैर
0: करती है
1: मकदम,
0: उसका खैर मकदम, जो उड़ने के लिए पर तोलता है।
1: वाह
0: हवा
1: वाह
0: करती है उसका खैर मकदम,
1: वाह,
0: जो उड़ने के लिए पर तोलता है, और मेरे घर में मेरा हमजाद होगा।
1: अरे क्या शेर कहा है
0: वाह,
1: भाई,
0: मेरे घर में मेरा
1: मेरे
0: हमजाद होगा, जो दस्तक पर मेरी दर
1: घर खोलता
0: खोलता
1: है।
0: है।
1: अरे क्या बात
0: वाह,
1: है भाई,
0: मेरे घर में मेरा
1: बहुत
0: हमजाद
1: खूब बहुत
0: होगा,
1: बहुत खूब,
0: जो दस्तक पर मेरी दर खोलता है, और मेरे दिल में तो एक दुनिया बसी है।
1: मेरे दिल में
0: मेरे
1: तो
0: दिल
1: एक,
0: में तो एक दुनिया बसी है, और मेरा घर साए साए बोलता है।
1: वाह
0: मेरे घर
1: अरे
0: में तो
1: क्या
0: एक
1: बात
0: दुनिया
1: है,
0: बसी
1: क्या
0: है,
1: बात है सर, वाह
0: मेरे दिल
1: वाह
0: में तो एक
1: वाह,
0: दुनिया
1: दुनिया
0: बसी
1: बसी
0: है,
1: है
0: और
1: मेरे
0: मेरा
1: घर
0: घर
1: साए
0: साए
1: साए
0: साए
1: बोलता
0: बोलता
1: है,
0: है, और सितारे तोड़ लाऊं आसमां से, सितारे तोड़ लाऊं आसमां से, मेरे अंदर का बच्चा बोलता
1: बच्चा
0: है।
1: बोलता है।
0: वाह,
1: अरे
0: सितारे
1: क्या शेर
0: तोड़
1: की है
0: लाऊं
1: भाई
0: आसमां
1: भाई,
0: से,
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: सितारे
1: वाह,
0: तोड़ लाऊं आसमां से,
1: मेरे
0: मेरे अंदर
1: अंदर
0: का
1: का
0: बच्चा
1: बच्चा
0: बोलता
1: है,
0: है,
1: क्या बात, अंदर का
0: सितारे
1: बच्चा जवाब नहीं है, वाह
0: सितारे
1: वाह वाह,
0: तोड़ लाऊं आसमां
1: हर एक का
0: से,
1: बचपन अपनी
0: वाह
1: जगह,
0: मेरे
1: ये
0: अंदर
1: बहुत
0: का
1: खूब,
0: बचपन बोलता है, और हमारा जर्फ हम पीकर भी चुप हैं।
1: आए
0: अच्छा,
1: वाह,
0: हमारा
1: हमारा
0: जर्फ
1: जर्फ
0: हम पीकर
1: पीकर
0: भी
1: भी
0: चुप
1: चुप है,
0: हैं, कोई पीता नहीं पर डोलता है।
1: अरे
0: हमारा
1: वाह
0: जर्फ हम पीकर भी चुप
1: वाह
0: हैं,
1: वाह,
0: हमारा जर्फ
1: कोई पीता
0: हम
1: नहीं
0: पीकर भी चुप हैं, कोई पीता नहीं पर डोलता
1: डोलता
0: है, और
1: है।
0: मक्ता सुन लीजिए, के
1: अच्छा
0: चढ़ाया जाएगा सूली पर एक दिन,
1: वाह, बहुत खूब,
0: चढ़ाया जाएगा सूली पर एक दिन, जमीले बेनवा सच बोलता
1: सच
0: है। वाह,
1: बोलता
0: चढ़ाया
1: वाह,
0: जाएगा सूली
1: सूली
0: पर एक
1: पे
0: दिन,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: जमीले बेनवा
1: बेनवा
0: सच
1: सच
0: बोलता
1: बोलता है,
0: है।
1: बहुत खूब साहब,
0: क्या
1: बहुत खूब,
0: सुहा।
1: वाह वाह,
0: ये थे मोहतरम जमील निज़ामाबादी, जो अपने मुरस्सा कलाम से नवाज रहे थे। इन्होंने बहुत से अशार और बहुत सी गज़लें, गज़ल के पैराए में बहुत ही उम्दा और बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में आपके सामने पेश किया। मैंने मुबारकबाद पेश करता हूँ, और फिर से दोबारा माइक जमील निज़ामाबादी के हवाले कर रहा हूँ। मोहतरम सामाइन, आकाशवाणी हैदराबाद से आप निज़ामबाद के मोतबर और नामवर शोरा का मुशायरा अब तक समाप्त फरमा रहे थे। बड़ी मसरत होती है जब कभी ऐसे मौके शोरा कलाम को मिलते हैं, और हम मशकूर हैं आकाशवाणी हैदराबाद के कि इन्होंने निज़ामबाद के शोरा को एक मुशायरा अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करके यहाँ आप तक पहुँचाने का मौका दिया है। हम आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमारा कलाम सुना है, और इन तमाम शोरा हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ तक आने की जहमत का गवारा फरमाई। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
2: सामाइन, अभी आपने मुशायरा समाप्त किया। इस मुशायरे में हिस्सा लिया था निज़ामाबाद के शोराए कराम ने, जिनके नाम थे जनाब मोहम्मद जमील निज़ामाबादी, सैयद रियाज तन्हा, सैयद जलाल अकबर, जनाब अशफाक आसिफी और जनाब शरीफ अथर ने। सामाइन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग। आपने ट्यून किया है FM 101.9 MHz।
3: FM रेनबो 101.9।
2: दोस्तों, अब हम नए रंग प्रोग्राम के उस मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहां पर पेश होता है प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा, जिसको आप और हम सुनना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि गीत सुरीले गाते जा प्रोग्राम में ऐसे गीत हम समाप्त करें जो हमारे दिलों को महजूज करें और हमें पुरानी यादों में ले चलें। ऐसे ही गीतों के साथ हम हाजिर हैं गीत सुरीले गाते जा सिलसिले को लेकर। दोस्तों, मोहब्बत में महबूब की असल पहचान जाहिरी सूरत में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में होती है। चेहरा तो लम्हाती मुस्कुराहट या उदासी दिखा सकता है, मगर दिल में उतरने से इंसान की असल रोशनी, मोहब्बत और खुलूस दिखाई देता है। चेहरा आंखों को

धोखा दे सकता है, मगर दिल कभी झूठ नहीं बोलता। जो दिल में उतर जाए वही इंसान की असल हकीकत जान लेता है। चेहरा तो लम्हों का आईना है, दिल में उतरना हकीकत का खजीना है। आंखों से देखना बस मंजर है, दिल से देखना मोहब्बत का समंदर है। ये ख्याल हमें याद दिलाता है कि इंसान को सिर्फ जाहिरी सूरत से नहीं बल्कि दिल की रोशनी और किरदार से परखना चाहिए।

फिल्म सलामी से लिया गया गीत आपने सुना। नायरंग प्रोग्राम पेश हो रहा है सामाइन, और गीत सुरीले गाता जा इस सिलसिले के तहत मेरी पसंद के फिल्मी नगमे पेश किए जा रहे हैं। दोस्तों, मोहब्बत में महबूब के हसीन चेहरे और प्यारी आँखों की तारीफ़ यूं की जा सकती है कि जैसे कायनात ने अपनी तमाम रानाइयाँ एक ही पैकर में समो दी हों। चेहरा वो आईना है जिसमें रोशनी और सुकून दोनों झलकते हैं। महबूब की मुस्कुराहट सुबह नौ की किरण की मानिंद दिल को ताजगी बख्शती है, और महबूब की नज़ाकत गोया फूल की पंखड़ियों की तरह नर्म और नाजुक है। आँखें वो दो चिराग हैं जो दिल की गहराइयों को रोशन करते हैं। इनमें मोहब्बत की कहानी, सब्र की जुबान और ख्वाबों की दुनिया समाई हुई है। कभी वो आँखें समंदर की गहराई की तरह पुरअसरार लगती हैं, और कभी चांदनी रात की तरह सुकून बख्शती हैं। महबूब मोहब्बत में अपनी महबूबा के बारे में शायद ये सब देखकर सोचता हो कि कुदरत ने महबूब की महबूबा को कितनी फुर्सत से बनाया होगा।

कुमार सानू की आवाज़ में दिलवाले फिल्म से लिया गया गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, और नैरंग में गीत सुरीले गाता जा इस सिलसिले के तहत फिल्मी नगमे पेश किए जा रहे हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़। दोस्तों, जैसे जैसे चांद अपनी रोशनी से रात को जगमगाता है, वैसे ही मोहब्बत में महबूब का चेहरा दिल की तारीकियों को उजाले में बदल देता है। मोहब्बत में महबूब का चेहरा चांद की तरह रोशन

और पुरसुकून लगने लगता है, जिसे देखकर दिल को सुकून और आंखों को खरार मिलता है। उसकी लताफत और नूरानियत गोया कायनात की सबसे हसीन रोशनी लगने लगती है।

0: फिल्म अजय से लिया गया गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नयरंग, और नयरंग प्रोग्राम में हर शब नयरंग प्रोग्राम में गीत सुरीले गाता जा सिलसिले के तहत कुछ सुरीले नगमे पेश किए जाते हैं। सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम गीत सुरीला, गीत सुरीले गाता जा, यहीं पर यानी आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर।
1: FM Rainbow 101.9।
0: दोस्तों, कभी एक चेहरा ऐसा होता है जिसको देखने के बाद कोई और चेहरा दिल को नहीं भाता। महबूब का वो चेहरा गोया आईना है जिसमें कायनात की तमाम खूबसूरती सिमट आई हो। जब दिल को एक ऐसा चेहरा दिखाई दे जिसमें सुकून, मोहब्बत और रोशनी का इम्तिजाज हो, तो फिर बाकी सब चेहरे बेरंग महसूस होते हैं। वो एक चेहरा दिल के लिए दुनिया बन जाता है और दिल उसी में अपनी तमाम खुशियां तलाश करता है। यही मोहब्बत की शिद्दत है कि दिल को एक ही जमाल में कायनात का हुस्न नजर आता है।

दोस्तों, मोहब्बत में गिले शिकवे तो होते ही हैं, मगर असल कमाल ये है कि उनका जिक्र ना किया जाए, बल्कि दिल में याद रखा जाए और फिर नरमी वो मोहब्बत से मनाया जाए। यही वो लम्हा है जब रिश्ते की असल खूबसूरती सामने आती है। मोहब्बत का हुस्न उस वक्त बढ़ जाता है जब शिकवे जुबान पर ना आए, बल्कि दिल में याद रहें। और फिर महबूब को मनाने के लिए उसे उसका नाम लिया जाए, उसको याद किया जाए, मुस्कुराहट यादों और खुर्बत का सहारा लिया जाए। यही रवैया मोहब्बत को मजबूत करता है और दिलों को करीब लाता है। गिले शिकवे दिल में छिपाए गए, याद करके वही मनाए गए। मोहब्बत का असल जमाल यही है कि रंजिशें भी प्यार में भुलाए गए। यही मोहब्बत की असल रूह है। शिकवे नहीं, बल्कि महबूब का नाम लिया जाए, उसे याद किया जाए।

0: फिल्म रामलखन से लिया गया गीत आपने सुना। सामाइन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग। नायरंग प्रोग्राम में गीत सुरीले गाता जा इस सिलसिले के तहत फिल्मी नगमे पेश किए जा रहे हैं। सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर हर शब 9:30 पर नायरंग प्रोग्राम में।
1: Rainbow 101.9 FM Rainbow 101.9
0: समय मोहब्बत में पता ही नहीं चलता कि महबूब से कब मुलाकात हुई और कब प्यार हो गया। मोहब्बत क्या चीज़ है कभी समझ नहीं आती। दिल को सुकून नहीं रहता, रातों की नींदें उड़ जाती हैं। मोहब्बत में महबूब का हाल बुरा हाल होता है और समझ ही नहीं आता कि मोहब्बत है क्या चीज़।

0: प्रेम रोग, इस फिल्म का नगमा आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। गीत सुरीले गाता जा, इस सिलसिले के तहत कुछ फिल्मी नगमे पेश किए गए नैरिंग प्रोग्राम में। उम्मीद करते हैं सभी नगमे आपको पसंद आए होंगे। इस तरह के गीत आप यहीं सुन सकते हैं। हमारी मुराद है FM रेनबो 101.9 मेगाहर्ट्ज पर हर शब नारंग प्रोग्राम में रात 9:30 पर। सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम नारंग, और सुनते रहिए नारंग प्रोग्राम में गीत सुरीले गाता जा।
1: FM रेनबो 101.9
0: प्रोग्राम नैरंग का इख्तिताम हो सामाइन, आइए उससे पहले सुनते हैं पयामे शब। तहरीर

ये वफा की सख्त राहें, ये तुम्हारे पाए नाजुक, न लो इंतकाम मुझसे मेरे साथ साथ चल के। वफादारी सिर्फ दावों से नहीं बल्कि सब्र, बर्दाश्त और कुर्बानी से साबित होती है। हर कोई इस कठिन रास्ते को निभा नहीं पाता। अगर दिल नाजुक हों तो सख्त रवैये रिश्तों को तोड़ देते हैं। मोहब्बत में सख्ती के बजाय नरमी और

तोड़ देते हैं। मोहब्बत में सख्ती के बजाय नरमी और समझदारी ज्यादा कारामद होती है। किसी के साथ चलने का मतलब है उसका साथ देना, ना कि उसे तकलीफ पहुंचाना। रफाकत में खुलूस होना चाहिए, हिसाब किताब नहीं। हर इंसान का दिल नाजुक होता है, हमें अपने अल्फाज और रवैये में एहतियात करनी चाहिए ताकि किसी को गैर जरूरी दुख ना पहुंचे। अगर ताल्लुक में सच्चाई और खुलूस हो तो मुश्किलात भी आसान लगने लगती हैं, वही छोटी बातें भी बोझ बन जाती हैं। मोहब्बत और वफा के रास्ते पर चलने के लिए दिल की नरमी, सब्र और माफी बहुत जरूरी है, वरना रिश्ता बोझ बन जाता।

पयाम शब आपने समाप्त किया। इसी के साथ सामाइन, आज का उर्दू प्रोग्राम नए रंग अब अपने अख्ताम को पहुंचता है। हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल शब 9:30 पर। हम हाजिर होंगे एक और नई बज्म लेकर प्रोग्राम नए रंग की। तब तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। शब खैर।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। स्टूडियोस की घड़ी में इस वक्त रात के 11 बजने ही वाले हैं। अब से चंद ही लम्हों में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को

0: वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हर मकदम है नाज़रीन हज़रात, बज़्म रंगे महफिल में आप हैं अपने दिल की आवाज़। जी हाँ, वही आवाज़ जिसकी नन्ही सी खूबसूरत और आपसे ज़्यादा प्यारी महफूज सूरत। जी हाँ, ये कोशिश है कि आपके दिल के किसी कोने में महफूज हूँ मैं। मैं हूँ आपके साथ आपके दिल की आवाज़, आपकी मेज़बान दोस्त सभिया नकवी। दिल की गहराइयों से आप सभी का तहे दिल से खुश आमदीद, खैर मकदम करती हूँ आप सभी का बज़्म रंगे महफिल की इस खूबसूरत शाम में, जहाँ हम और आप मौसीकी के अनगिनत रंग बिखेरेंगे। जी हाँ, उर्दू शायरी के साथ साथ आपकी और मेरी जज्बातों का समा, और साथ ही साथ हिंदी फिल्म सिनेमा के जो खूबसूरत शाहकार हैं, जी हाँ, कुछ नगमे, कुछ ऐसे गीत जो आज भी अजर हैं, अमर हैं, कामयाब हैं और हमेशा रहेंगे महफूज हमारे दिलों में। कुछ इसी तरह इस मौसीकी की महफिल की जीनत को बढ़ाएंगे हम और आप मिलकर, तो बज़्म रंगे महफिल को रौनक और खुशबुओं से मुअत्तर करने के लिए और अपनी खूबसूरत बातों से इस शाम में रंग भरने के लिए बिल्कुल हो जाइए तैयार, क्योंकि मेज़बान आ चुकी है आपके पास आपके साथ। वादे के मुताबिक, जैसे कि आप सभी से किया था मैंने वायदा कि रहूँगी आप सभी की मुंतज़िर, और मुझे लगता है कि आप भी मेरे मुंतज़िर थे।

बता रहे हैं, आपके मैसेजेस जो मुझ तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, खुशामदीन खैर मकदम एक बार फिर से 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली और दिल्ली के तमाम आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ पूरा हिंदुस्तान इस वक्त हमारे साथ, मुल्क की अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर मोबाइल ऐप और डीटीएच के ज़रिए से भी हमारा और आपका रابطہ आपस में कायम है और कायम रहेगा इंशाल्लाह। तो चलिए जनाब, बज़्मे रंगे महफिल की शुरुआत पहले इस खूबसूरत शाहकार के साथ, क्योंकि अगर साज़ तरानों का साथ हो तो मौसीकी का रंग कुछ अलग ही रंग नज़र आता है।

जी हाँ, साज़ आवाज़ और मौसीकी की खूबसूरत रात, जब ये सब मिल जाते हैं ना जनाब, तो अपने आप समा खूबसूरत और रात हम मिजाज हो जाती है। मिजाज ऐसे कि जब आप किसी के मिजाज में अपनापन महसूस करने लगें, जब किसी के रंग में खुद को ढलता हुआ महसूस करने लगें, जब किसी की आँख नम हो और आपको लगे कि शायद आपकी आँखों में भी हल्की सी नमी उतर आई है, और जब कोई खुश हो तो आपको लगे कि मसरत में पूरा जहां झूम रहा है, शायद इसे ही कहते हैं अपनापन, किसी की गुर्बत का एहसास, किसी के साथ रहने का एहसास। एहसासों के नाम अलग अलग हो सकते हैं जनाब, कभी ये दोस्त की सूरत में आता है, कभी हम सफ़र, कभी हम नवा की सूरत में, कभी महबूब की सूरत में, लेकिन आता ज़रूर है। ज़िंदगी के किसी न किसी एक पड़ाव पर आपको ये कमी खलती है, और जब ये कमी मुकम्मल हो जाती है तो लगता है कि ज़िंदगी जन्नत बन गई है। लेकिन उम्मीद का दामन हमेशा कहती हूँ कि थामे रखना है, क्योंकि क्या जाने कल कौन सी खूबसूरत उम्मीद आपके दरवाजे पर आपके लिए खटखटा रही होगी।

इसलिए अर्ज किया है जनाब कि गमे हयात परेशान न कर सकेंगे मुझे, कि गमे हयात परेशान न कर सकेंगे मुझे, कि आ गया है हुनर मुझको मुस्कुराने का। जी हाँ जनाब, लाइफ यानी ज़िंदगी में अगर यही आप अपने रद्देमल रखते हैं तो यकीन मानिए कि किसी भी तरह का गैर अमल या किसी भी तरह का बुरा अमल आप पर असर नहीं कर सकता। आपको चारों जानब सिर्फ और सिर्फ खुशनुमा और ख़ूबसूरत बातें, यादें, मोहब्बत, रंग, नूर यही नज़र आता है। फ़िलहाल मुझे तो कुछ और भी नज़र आ रहा है। जी हाँ, हमारे लिसनर्स जो हैं वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने मेरे पास आ चुके हैं और हमेशा की तरह बेशुमार चाहतों का सिलसिला अपने साथ लेके आए हैं और ये बता रहे हैं कि हाँ, वो भी मेरे साथ इस खूबसूरत शाम में जुड़ चुके हैं। तो कौन है वो जनाब? हमेशा की तरह सौरभ अनेजा तो अपनी मौजूदगी दर्ज करा ही चुके हैं और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमा कुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान साहब, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा, यानी विद फैमिली इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो लुत्फ अंदोज सिलसिला है जनाब, इसी तरह जारी रहेगा आपकी और मेरे साथ। मैं आपकी मुंतज़िर मुख्तलिफ बातें लेकर मुसलसल आपके इंतज़ार में बज़्म रंगी महफिल की इस शाम को खूबसूरत बनाने के लिए हूँ तैयार। बने रहिए बज़्म रंगी महफिल में अपने दिल की आवाज़ आरजे सबिया नकवी के साथ।

जी हाँ जनाब, मोहब्बत का वजूद अब का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। मोहब्बत आज के ज़माने से नहीं बल्कि एक ज़माने से चली आ रही है। इसके किरदार ज़रूर बदल जाते हैं, लेकिन इसकी जो शिद्दत है, इसका जो अकीदा है, इसका जो भरोसा है, इसमें जो वफा की चाशनी है, वो हमेशा कायम रहती है। ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत सिर्फ महबूब से की जाए, मोहब्बत के अलग अलग किरदार बदलते हैं और अलग अलग एहसास। कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो खुदा हमें देता है और कुछ मोहब्बतों को हम ज़मीन पर अपना आप चुन लेते हैं। इसीलिए तो ये खूबसूरत गाना जो भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, ये बयां कर रहा था उस रिश्ते को जो हम खून चुनते हैं। जी हाँ, अपने हमसफ़र, अपने हमनवा का रिश्ता। और बाज़ दफ़ा उस रिश्ते में बेहद कामयाब होते हैं और बाज़ दफ़ा शायद कभी कुछ कमी भी रह जाती है। लेकिन हमेशा कहती हूँ कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, इसीलिए हमेशा उम्मीद का दामन थामे रखना चाहिए। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खुदा खुश किस्मती से हमें निभाने के लिए तोहफे के तौर पर दे जाता है। खैर, एक शेर अर्ज कर रही हूँ फिलहाल, उसको लुत्फंदोज हुई उस शेर के साथ कि नज़र में नूर बदन पर लिबास रंग लिए, नज़र में नूर बदन पर लिबास रंग लिए, ये कौन आता है खुशबू को अपने संग लिए। जी हाँ जनाब, ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो खुशबुओं को अपने साथ ले आते हैं। ऐसी खुशबू जो इंसान कभी नहीं भुला पाता, ऐसी खुशबू, ऐसा एहसास जिसको ताउम्र इंसान अपने पास रखना चाहता है, ऐसी ही खुशबू है माँ बाप की। जी हाँ, एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही फीलिंगफुल, बहुत ही इमोशन से, जज्बात से भरपूर एक मैसेज हमारे पास आया है, उसको ले लेते हैं। हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी, हमारी बिल्कुल नई नई सी, हमारी लिसनर कहें, हमारी फैमिली का एक न्यू मेम्बर कहें, वो जुड़ी हैं। यह है सारा तालिब, जो कि बेसिकली बिलोंग करती हैं यूपी बिजनौर से, लेकिन फिलहाल अब यहाँ अपनी जॉब के सिलसिले में दिल्ली में बस गई हैं। शाहीन बाग ओखला से हमें मैसेज कर रही हैं और कह रही हैं कि हेलो सबीहा, हाउ आर यू, आई एम फाइन। कह रही हैं कि पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ और फिलहाल यहीं दिल्ली में फ़िलहाल अपना कायम कायम कर चुकी हूँ। और सबीहा, आपके शो के ज़रिए से एक प्यारा सा मैसेज है जो मैं अपने पेरेंट्स तक, अपने वालदैन तक, अपने माँ बाप तक पहुँचाना चाहती हूँ। और कुछ दिल की बातें हैं जो इंसान शायद कभी ज़्यादा खुलकर नहीं कह पाता, लेकिन ये जो एक प्लेटफॉर्म है FM का हमारे पास, इसके ज़रिए से कई बार बहुत सारी बातें इंसान अपनों को कह जाता है। तो जी हाँ, ये कह रही हैं

सबिहा, मेरी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे ज़िंदगी में सब कुछ दिया है। हर किसी के माँ बाप देते हैं और मुझे लगता है कि हर इंसान का अपने माँ बाप से एक अलग और लगता है कि बिल्कुल अनोखा रिश्ता होता है। ये कह रही हैं कि सबिहा, मेरी जो मदर हैं उनका नाम है फरजाना अफरोज़ और जो मेरे फ़ादर हैं उनका नाम है मिर्ज़ा तालिब बेग, और ये तीन बहनें और एक भाई हैं। अपना नाम तो मेंशन किया है, एक छोटी बहन भी है और एक और बहन है जो इनकी अब शादी के बाद बस चुकी हैं वेस्ट बंगाल में, जिनका नाम सैम है, जो यहाँ मेंशन करा है इन्होंने। और ये कह रही हैं कि सभी, बेसिकली बात यह है कि आपके ज़रिए से मैं अपने पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ उनके उस जज्बे के लिए, उनके उस हौसले के लिए जो ज़िंदगी भर उन्होंने मेरे लिए दिखाया है। ज़िंदगी की हर खुशी मुझे दी है और आज मुझे इतना कामयाब बनाया है कि आज मैं एक सेल्फ डिपेंड लड़की होकर दिल्ली में अपने लिए बहुत कुछ तलाश कर रही हूँ, और कई सारे ऐसे मौके भी हैं जो मुझे मिल भी चुके हैं, यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ये पा भी चुकी हैं और एक कामयाब खूबसूरत लड़की के तौर पर अपनी ज़िंदगी को एस्टैब्लिश बनाने में लगी हैं। तो वेल सारा, हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, और आपने कहा है कि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ और आपके ज़रिए से उन्हें कहना चाहती हूँ कि आपके उस सब चीज़ों के लिए थैंक यू जो मैं आज तक नहीं कह पाई, लेकिन उन सभी के लिए कहना चाहूँगी जो आपने मुझे दिया बिन मांगे। तो वेल, मुझे लगता है कि सारा आपके पेरेंट्स तक आपका ये खूबसूरत और इमोशन से भरपूर मैसेज पहुँच गया होगा। उम्मीद करते हैं कि वो आपकी इस मीठे से जेस्चर को ज़रूर फील करेंगे और आपकी इस मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। खैर चलिए सारा, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा हमारे साथ और हम आपके साथ इसी तरह बने रहेंगे।

जनाब, ऐसी ख्वाहिश वही कर सकता है जो हद दर्जा आपसे मोहब्बत करता हो, जो आपको किसी के साथ बांट ना सके, आपको किसी के साथ साझा ना कर सके। और हमेशा कहा जाता है कि मोहब्बत करें तो बेहतरीन और लाजवाब करें, वरना मोहब्बत में रखा ही क्या है, बेशुमार गम और अनगिनत रुसवाइयाँ। लेकिन जब मोहब्बत, प्यार, इश्क किसी से करें तो ऐसा करें कि दूसरे को इतनी इज्जत दें कि उसको आपकी मोहब्बत पर फख्र महसूस होने लगे। कुछ खुशनसीब लोग हैं ऐसे जो ऐसे ही मोहब्बत करते हैं, वहीं कुछ बदनसीब लोग मोहब्बत की कदर नहीं समझते। शायद ऐसे लोग दूसरे इंसान को अपने से कमतर महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद सामने वाला इंसान जो हमसे इस कदर मोहब्बत, या यूं कहूं कि इस हद शिद्दत से मोहब्बत कर रहा है, तो शायद उसमें ही कोई कमी है। लेकिन जनाब, ये कमी नहीं बल्कि आप उसकी जिद या आप उसकी बेतहाशा मोहब्बत का मरकज बन चुके हैं। इसलिए कद्र कीजिए उसके जज्बात की, क्या पता कल उससे बेहतर या उससे चाहने वाला आपको कभी नसीब ना हो। लिपटा है मेरे दिल से किसी रास की सूरत, लिपटा है मेरे दिल से किसी रास की सूरत, वो शख्स के जिसको मेरा होना भी नहीं है। ये इश्क मोहब्बत की रवायत भी अजब है, ये इश्क मोहब्बत की रवायत भी अजब है, पाना भी नहीं है उसे, खोना भी नहीं है। चलिए हुजूर, आप ना खो जाएं, मतलब आपके खूबसूरत पैगामात ना खो जाएं, उससे बेहतर है कि आप को हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर लें। तो चलिए, कुछ मैसेज जो मुझ तक पहुंचे हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, और हमेशा की तरह प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त निकाल कर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं, बेहद शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ गए हैं दानिश इकबाल खतौली से। सभी हम, मैम आप कैसी हैं? आपकी उर्दू बेहद अच्छी है और वॉइस तो है ही कमाल की, साथ ही साथ उर्दू बोलती आप बहुत अच्छी हैं। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ हमारे साथ जुड़ी हैं, हेलो सबिया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू यू। आपके प्रोग्राम का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से कर रही हूँ मैं, पुष्पा, अहमदाबाद गुजरात से। जैसे बहुत गर्मी में बारिश से राहत मिलती है, वैसे ही आपके प्रोग्राम से हमें सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, इतनी मोहब्बत के लिए बेहद शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत के लिए। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जो रेगुलर लिसनर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन काफ़ी लंबा मैसेज सर आपने किया है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ छोटा मैसेज करें तो अच्छा लगेगा, फिर भी कोशिश करती हूँ आपकी।

मैसेज पढ़ने की। डियर आरजे सबीहा नकवी, आपकी बातें सुनकर दिल भर आया, ये दर्द दिल के बड़ा करीब है। अच्छा, जो मैंने से पहले वाले शो में अपनी बातें का जिक्र किया था, उन्हीं को इन्होंने यहाँ दोहराया है और बेहद अफसोस जाहिर किया है उन चीज़ों पर जो हम जिक्र कर रहे थे। चलिए, आपकी इस कंसर्न के लिए, आपकी इस तवज्जो के लिए बेहद शुक्रिया। मोहम्मद सरफराज आलम साहब, जो कि हाट दशरा बहार ज़िला अररिया बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। ये होता है, इंसान जब अपने दर्द में किसी का दर्द महसूस करता है ना, तो सच मानिए कि वो इंसान दिल से बहुत अच्छा होता है। और आप सब दिल से बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे अपना मानते हैं। और मेरी खुशी, मेरे दर्द, मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात, मेरे एहसास, मेरे इमोशंस को अपना मानकर बहुत कुछ लिख भेजते हैं। माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि बहुत लेंथी मैसेज नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन आपकी सारी बातें दिल तक पहुँचती हैं। फ़िलहाल आप तक पहुँच रहा है आज का ये अगला नगमा।

अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो फिर क्यों इतने हिजाबों में मिलें।

जी हाँ हुजूर, दुनिया की रुसवाइयाँ और दुनिया के तानों से डरकर अक्सर रिश्ते दम तोड़ देते हैं। ऐसे रिश्ते जो शायद कमज़ोर नींव पर बने होते हैं, ऐसे रिश्ते जो शायद दुनिया से डरकर या रिश्तों में खोखलापन पाकर अपनी उम्मीदों को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है जनाब कि ऐसे रिश्ते बनाने ही क्यों हैं, क्यों ना ऐसे रिश्तों को तामीर किया जाए जो मजबूत हों, जो आपके साथ ताकयामत आपके पास रहें। ऐसे रिश्ते जिनमें ना कोई बेहयाई हो, ना बिछड़ने का डर, ना जुदाई का गम। ऐसे रिश्ते जो पाकीज़ा मोहब्बत पर दम भरते हों। ऐसे रिश्ते जो मोहब्बत के साथ मोहब्बत के साथ मोहब्बत पे फ़ख्र महसूस करा सकें। ऐसा ही रिश्ता तो है मेरा और आपका, खुलूस का, अकीदे का, मोहब्बत का, जज्बात का, एहसास का, जो आपके मैसेजेस के ज़रिए मुझ तक पहुँच रहे हैं। चलिए अब कुछ और मैसेज शामिल कर लेते हैं, वरना हमारे सारे लिसनर्स कहेंगे सबीहा हमारे मैसेज की तरफ भी नजरे करम करिए। चलिए जनाब, गुड इवनिंग सबीहा, गुड इवनिंग टू यू सर, वेलकम टू द शो। रात की इस तरह में गज़लों का ये खूब जो आप प्रोग्राम दे रही हैं अपने शबाब पर है, हवाओं और फिजाओं में आपकी तैरती हुई खूबसूरत आवाज़ बेहद सुकून दे रही है। नाइस प्रेजेंटेशन। किशन वंजानी, नीलम स्वाति और कीशु रेलवे कॉलोनी आनंद बिहार से हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला मैसेज, एक बार फिर से अपनी शायरी यहाँ दर्ज करा दी है सरफराज आलम साहब। जोशी नहार दर्शना बहार जिला अररिया बिहार से, बिछड़ कर तू मुझसे जुदा ना हो सका, तू मेरी यादों की पनाहों में आज भी है। भले ही मंजिलें अलग हो गई हमारी, मगर तेरा नाम मेरी दुआओं में आज भी है। बहुत खूब। बेशक गुले सुकून मेरे दिल में कोई खिले, मेरे चाके जिगर भी आकर एक बार वो सिले, न सागर तमाम याद कर यूँ सोख लूँ खुदाया, कि कतरा भी आंसुओं का मेरे यार को मिले, मेरे यार को ना मिले। प्रेमचंद प्रेमी जैतरा धामपुर बिश्नौर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत खूब। खैर आप तो हैं ही, किसे कहते हैं कि कलम के कलाकार, और अपनी खूबसूरत शायरी से, बातों से, अपनी अदायगी से आप हमेशा हम सबको लबरेज करते रहते हैं। तो बेहद शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने से। एक बार दानिश भी खतौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ हाँ भाई, मुझे पता है दानिश आप भी प्रोग्राम में मेरे साथ हैं, और इसी तरह साथ बनाए रखिएगा और इस पाकीज़ा रिश्ते और इस पाकीज़ा मोहब्बत को अपने वजूद से महकाते रखिए।

हर मकदम नाज़रीन हजरात, आप सुन रहे हैं बज़्म रंगी महफ़िल, अपनी दिल की आवाज़ सभी हनकवी के साथ। खुश आमदीद आप सभी को एक बार फिर से बज़्म रंगी महफ़िल में। आज मैं हूँ आपके साथ, आपके दिल की आवाज़ सभी हनकवी। लगातार जारी है बज़्म रंगी महफ़िल का ये कारवां 102.6 MHz पर, दिल्ली और दिल्ली के तमाम आसपास के इलाकों में इस वक्त हम सुने जा रहे हैं, और मोबाइल ऐप और DTH के ज़रिए से भी हमारा और आपका सिलसिला, हमारा और आपका कारवां आपस में बना हुआ है।

सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी, सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी, इतना रोए थे कि आंखों ने कयामत की थी। मेरे उजड़ने का सबब जब भी किसी ने पूछा मुझसे, मेरे उजड़ने का सबब जब भी किसी ने पूछा मुझसे, मैंने बस इतना कहा मैंने मोहब्बत की थी। जी हाँ हुज़ूर, मोहब्बत को जितनी बुरी चीज़ लोगों ने आजकल बना दिया है, उतनी चीज़ बुरी है नहीं। अगर कायदे से की जाए और अकीदे से की जाए तो मोहब्बत से हसीन और ख़ूबसूरत शय और दुनिया में है नहीं। और हमारा ये जो शो है ये भी मोहब्बत पर ही बेस्ड है। जी हाँ, इसमें बातें की जाती हैं वो खूबसूरत जो आपके दिल को सुकून दे सकें, आपकी ढलती हुई इस रात में आपकी दिन भर के जद्दोजहद को सुकून पहुंचा सके। इसीलिए मोहब्बत से ज़्यादा मीठी और ख़ूबसूरत चीज़ और कोई नहीं हो सकती। और हमेशा मैं कहती हूँ कि अलग अलग किरदार अलग अलग मोहब्बत के तकाजे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही इंसान के इर्द गिर्द आप मोहब्बत को तलाशना शुरू करें। अपने दोस्तों में ढूंढें, अपने वालदैन में ढूंढें, अपने दोस्त अहबाबों में ढूंढें, अपने किसी ऐसे साथी में ढूंढें जो महबूब के दर्जे से अलग लेकिन दिल के बहुत करीब हो। इसीलिए मोहब्बत जिसमें ढूंढेंगे वैसे ही पालेंगे। और अगर अकीदे से मोहब्बत की जाए जनाब, तो मोहब्बत ज़रूर कामयाब होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई दर्द, रुसवाइयाँ, बदनामियाँ, इस मोहब्बत में यही बचा है। जनाब ये नहीं बचा, इसमें वो सब कुछ बचा है जो आप दिल से महसूस करना चाहते हैं। अगर दिल से महसूस करेंगे तो इसमें वो सब है जो आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, यानी एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के लिए की पॉजिटिविटी। और आप सब जो एक दूसरे के लिए शख्स ढूंढते हैं ना कि शायद कोई हमारे दिल की बात सुन ले, शायद कोई हमारे दिल का दर्द समझ ले, या कुछ पल कुछ लम्हे ही सही कोई इंसान रुककर हमारी भी तो सुने। तो अगर दुनिया में कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा दोस्त आपके लिए मुनक़हित या मुकर्रर है तो उसकी कद्र करें और उसे ज़िंदगी में हमेशा अपने पास रखें।

ऐसे ही पास और ऐसे ही साथ मैंने भी आपकी सूरत में अपने तक रखा है, यानी आपके मैसेज, यानी आप। सौरभ अनेजा एक बार फिर से मेरे साथ हैं। आपकी शायरी कमाल होती है, ये तो नहीं बोलना चाहिए कि जिनके पास आपकी शायरी की

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
2: वक्त मिला ले 11:51 और 1 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर गीत मेरे मन मीत। अगला गीत जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो है, फिल्म का नाम है अनुरोध, किशोर कुमार की आवाज होगी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का होगा। एक बार फिर से ये गीत लिखा हुआ है आनंद बख्शी साहब ने।

खूबसूरत गीतों का ये, मधुर गीतों का ये सिलसिला यूं ही चल रहा है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है और आवाज होगी मुकेश साहब की। फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के। इसी गीत के साथ अर्पना को दें इजाजत। गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुदेन्द्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESAC की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूल शासन और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें उच्च रिजोल्यूशन, ग्राम संसाधन मानचित्रण, आद्र भूमि, वन, नदियों और भूदृश्यों की नियमित निगरानी, पूर्वोत्तर में भूस्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म NER शील्ड का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए विशेष ढांचा तैयार करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन शरीर

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज की रात मैं हूं आपके साथ माधुरी, कार्यक्रम निशिकंथा लेकर। नमस्कार। अच्छा, हम जब भी निशिकंथा की बात करते हैं तो बात ये होती है कि यहाँ पर जिंदगी की हर धड़कन सुनाई देती है, और हमने इसी प्लेटफॉर्म से अपनी बहुत सारी बातें की हैं, अपने जज्बातों का इजहार किया है, मोहब्बत की बातें की हैं, ख़तों की बातें की हैं, न जाने कितनी कितनी बातें की हैं। पर आज जो बात करेंगे वो अपनी तो है ही, साथ ही साथ हम सबकी भी है। बात है हमारे आसपास की, बात हमारे पर्यावरण की। तो बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, बस आपका साथ चाहिए। निशिकंथा के बहाने करेंगे बहुत सारी बातें।

ये जिस चित्रकार ने हमें सुंदर सी खिली खिली हर मौसम से लबरेज ये धरती दी है, तो वहाँ हमारा भी कुछ फर्ज है कि हम इस धरती को ऐसा ही सुंदर बनाए रखें। प्रकृति जो है, ये हमारी प्रकृति माँ की गोद में हम सब कितने अच्छे से जी रहे हैं, फल फूल रहे हैं। वो हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देती है, पानी देती है, फल फूल देती है, लेकिन कभी सोचते हैं कि हम क्या दे रहे हैं? बस लालच, प्रदूषण और बेरुखी। आज जब जंगलों की कटाई हो रही है, नदियां विषैली हो रही हैं, आकाश धुंधला हो रहा है, तब भी हम सोचते हैं कि केवल पेड़ लगाने भर से पर्यावरण बच जाएगा। पर सच्चाई ये नहीं है दोस्तों। बिना एक पौधा लगाए भी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित धरती को छोड़ सकते हैं, और इसी के साथ हम सबकी जिंदगी फूलों की तरह खिली खिली रहेगी। बस एक बार हमें ध्यान से सोचने की ज़रूरत है और कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर गुजरने की ज़रूरत है।

पता है आपको कि हमारे एक एक हम सब जो एक एक हैं और हमारे एक छोटे छोटे प्रयासों से, या कहें कि जो हमारे ख़राब जो छोटे छोटे ख़राब ख़राब सी आदतें हैं उन्हें सुधार कर बस हम आगे बढ़ें तो बहुत कुछ हो सकता है। जब लाखों दिल एक साथ धड़कते हैं ना तो तूफान बन जाता है। और इसी तरह से हम सबको छोटे छोटे से प्रयास करने हैं। हर दिन जो हम प्लास्टिक की बोतल, थैली और पैकेट इधर उधर फेंकते रहते हैं ना, उसका प्रबंधन करना है। सदियों ये जो चीज़ें हैं जो इधर उधर हम प्लास्टिक की फेंक देते हैं, ये सदियों तक धरती को जहर देते रहते हैं। और क्या हम चाहेंगे कि हमारी धरती जहरीली हो जाए? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हमें बस थोड़े थोड़े से प्रयास करने

गीला, सूखा और प्लास्टिक जैसे कूड़ों को अलग अलग करके फेंकना है, और जो प्लास्टिक है उसे तो रिसाइकलिंग जो केंद्र हैं वहां तक पहुंचाना है। हमारे इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से लाखों टन प्रदूषण कम कर सकते हैं हम। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये सच है। और जो हमारे भाई बहन जो हम गर्मियों में जाते हैं पहाड़ों पर घूमने, वहां पर भी हम चिप्स के पैकेट फेंक देते हैं, पानी की बॉटल छोटी छोटी इधर उधर गिरा देते हैं, फेंक देते हैं, तो ये सब हमारी धरती में ही तो जज्ब हो रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये सब हमें नहीं करना है, वरना हम कहाँ जाएंगे नीले पर्वतों की धारा देखने, हम कहाँ घूमने जाएंगे। तो थोड़ा तो सोचना बनता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय हो गया है रात के 12:29 और 10 सेकेंड। ये कार्यक्रम है निशिगंधा और आज की रात मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ। देखिए ना, हम इस जगह से अपनी बात करते हैं, अपने घर के, अपने परिवार के, हर चीज़ की बात करते हैं, बहुत सारे जज्बातों को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उन पर चर्चा करते हैं। और आज जो है, यहीं से मैंने सोचा सोने से पहले एक ऐसी बात हम सबको मंथन करनी चाहिए कि जब हम घर से बाहर पैर निकालते हैं तो वो जो जगह है वो भी तो हमारी है, ये दुनिया हमारी है, देश हमारा, ये शहर हमारा, ये मोहल्ला हमारा है। तो सोचेंगे भी तो हम ही ना कि घर तो साफ कर लिया लेकिन उसके बाहर क्या, उसके बाहर भी हम ही हैं और हमें ही सब करना है। एक एक कड़ी मिलके हम ये सारे काम करते जाएंगे तो देखिएगा घर से बाहर भी सब कुछ सुंदर, अच्छा, स्वच्छ होगा और हमारा पर्यावरण खुश होगा। और ये जो पर्यावरण में नए नए रंग बिखरे हुए हैं ना, इनसे हम अपनी एक नई कहानी लिखेंगे।
1: I reached a point where I said stardom is now very big. Stardom has to finish somewhere.

इस गीत में एक ये था ना कि कराया जग से किनारा, तो हमें इन बातों से किनारा बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन हाँ किनारे पे जो बैठकर, यानी कि समंदर के किनारे जो बैठकर, नदियों के किनारे बैठकर कितने ही लोग जो हैं खाते हैं पीते हैं और फिर वो कचरा वहीं फेंक आते हैं, इस बात से किनारा करना है कि हमें ये नहीं करना है। आपकी एक छोटी सी आदत समुद्र के किनारे को प्लास्टिक से मुक्त करा सकती है। देखिए, ये बहुत ही भावुक क्षण है जब हम ये देखते हैं कि समुद्री जीव प्लास्टिक खाकर मर रहे हैं। क्या हम इतने निर्दयी हो गए हैं? पानी और बिजली की बचत भी जो है वो पर्यावरण संरक्षण ही है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, नहाते समय नल बंद रखिए, टपकते नल को तुरंत ठीक करवा लीजिए, बिजली के बल्ब को LED में बदल लीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे लाखों लीटर पानी बच सकता है, बिजली बच सकती है। और पता है हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत ही दूर से पानी लेके आते हैं, महिलाएं बहुत दूर से पानी लेके आती हैं। देखिए, पानी का तो कोई रंग नहीं होता, लेकिन हम सबके रंग अलग अलग हैं। कुछ लोग हैं जो पर्यावरण संरक्षण के कामों में लगे हुए हैं, अपने छोटे छोटे प्रयासों से कुछ ना कुछ कर गुजर रहे हैं, और कुछ लोगों ने अपने बहुत ही खराब खराब रंग दिखाए हैं। तो ये हम में है, ये हमें सोचना है कि हमें कैसा इंसान बनना है, पानी का रंग कैसा होना चाहिए, ये हमें तय करना है।

अब जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफ़र है निशे कंधाकार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम छोटे छोटे प्रयासों के ज़रिए अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और ये ख़ास तौर पर रात के कार्यक्रम में इसीलिए लेकर आए कि जब हम सोएं तो एक बार अपनी प्रकृति के बारे में सोचें, एक बार उस आबो हवा के बारे में सोचें जिसमें हम सांस लेते हैं, और सोच कर देखें कि हमें हमारी ज़ात के अलावा भी इस प्रकृति को देने के लिए कुछ है और हमें वो देना चाहिए।

0: जी हाँ, जब बोलने पे आते हैं तो पर्वत भी बोलने लगते हैं। और बात तो ये है कि हमने ना अपनी ज़रूरतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ा ली हैं। हमें उपभोग से ज़्यादा खरीदने की आदत हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा करने लगे हैं, तो थोड़ी सी रिफ्यूज़ करने की भी आदत डाली कि नहीं, अब बस ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। बहुत सारा सामान जो ज़रूरत का भी नहीं है, हम बाज़ार से वो भी ख़रीद लाते हैं। पुरानी चीज़ों को नए कपड़े, पुरानी चीज़ों को जो है उन्हें भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। कुछ दिन हो गए, चलो अब नया कुछ ले लेते हैं। तो घर में पुरानी चीज़ भी पड़ी होती है, नई चीज़ भी आ जाती है, और घर में भी उन चीज़ों को रखने की जगह कम पड़ जाती है। तो पुराने को निकालते निकालते भी बहुत सारा कूड़ा होता है। और आप देखेंगे, अगर आप आज से भी अपने घर में देखना शुरू कर दें तो आपको लगेगा कि बहुत सारा सामान ऐसा है जिसकी आपको ज़रूरत थी लेकिन कभी पड़ी नहीं, हम ले आए और हमने घर में रख ली चीज़ें। तो और जो बिना ज़रूरत का सामान है वो हम दूसरों में बांट भी सकते हैं। किताबें, खिलौने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी शायद आज आपको ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें दूसरों में बांट दें। परिवार, मित्रों और पड़ोसियों से भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को अपनाने के लिए बताएं। हम एक किताब से पहले जो है दो तीन मतलब साल निकाल देते थे। हमने पुरानी किताब खरीदी, उसे पढ़ा, फिर हमसे किसी ने खरीद लिया आधे रेट में, ऐसे भी हुआ था। आप देखेंगे कि पहले ऐसा होता था, लेकिन आज हर सेमेस्टर में आपको नई किताब चाहिए। हर क्लास में जब नया बच्चा जाता है नई क्लास में, तो हम उसे पूरा नया सेट ला के देते हैं। तो हमने भी जो है ना अपनी ज़रूरतें यूं ही बढ़ा ली हैं। शायद उसकी उतनी ज़रूरत है नहीं, लेकिन हमने उसे तरजीह देना शुरू कर दिया है। तो छोटी छोटी सी आदतें अगर हम बदलेंगे तो ज़रूर हमारा पर्यावरण भी बदलेगा, और हम प्रकृति से नज़रें मिलाने के काबिल हो जाएंगे। ये जो अगला गीत मैं चला रही हूँ, ये थोड़ा सा जज्बाती है, जज्बातों की तरफ ले जाके हमें कुछ सिखा रहा है, लेकिन हाँ, सिखा तो रहा है।
1: कैसे जीते हैं भला

देखिए ना, प्रकृति हमसे बदला तो नहीं लेती है, वो सिर्फ चुपचाप सहती रहती है, लेकिन उसकी चुप्पी अब चीख बन रही है, बाढ़, सूखा, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। हमें अब जागना होगा। बिना पेड़ लगाए भी हम अपने व्यवहार, आदतों और सोच को बदल कर एक हरा भरा भविष्य बना सकते हैं, और हम जरूर बनाएंगे। आज की रात सोचेगा जरूर। और जाते जाते ये गीत आप सभी के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESAC की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूल शासन और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें उच्च रिजोल्यूशन, ग्राम संसाधन मानचित्रण, आर्द्र भूमि, वन, नदियों और भू दृश्यों की नियमित निगरानी, पूर्वोत्तर में भू स्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म NER शील्ड का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए विशेष ढांचा तैयार करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी और झारखंड से प्रणव झा को पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। इसके अलावा तमिलनाडु से

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूँ आपके साथ माधुरी। नमस्कार। और रात के इस वक्त हम लेकर आते हैं एक ख़ास पेशकश जिसका नाम है गीत सुहाने, और इसमें हम आपको सुनवाते हैं ओल्ड क्लासिक्स।

जी हाँ, चंपी से क्या घबराना, और चंपी तो सर को हल्का ही करती है। और ये जो गीत है ये बहुत ही प्यारा गीत, और ये गीत हम आपके लिए लेकर आए थे फिल्म प्यासा से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म सीआईडी से शमशाद बेगम के आवाज़ में।

वाह क्या बात है, मस्ती भी मौसीकी भी। और जो अगला गीत आप तक हम पहुंचा रहे हैं वो है फिल्म मधुमती का गीत लता जी की आवाज में।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है गीत सुहाने का और समय हो रहा है इस वक्त रात के 1:26 और पूरे 15 सेकेंड।

ये जो गीत सुना आपने, ये गीत था फिल्म, कौन सी फिल्म से है ये गीत? ये गीत है फिल्म हावड़ा ब्रिज से, और इसे गाया आशा जी ने। माफ़ कीजिएगा, मैं भी गुम हो गई इस गीत में। और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, फिल्म 16वां साल से, हेमंत कुमार की आवाज़ का ये गीत है, SD बर्मन के संगीत से सजा हुआ।

0: वाह वाह, हेमंत कुमार जी की आवाज़ का जवाब नहीं। और आपने एक चीज़ नोट की, जी हाँ, माउथ ऑर्गन जो बज रहा था कितना प्यारा बज रहा था और पूरे गाने में था। और कुछ आपने नोट किया? ज़रूर करिएगा। हर गाने में जो पुराने गाने हैं इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। आज तो संगीत बनाने का जो रिवाज है वो कुछ और ही हो गया है, लेकिन इनमें आपको अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सुनाई देंगे और वो एकदम से कानों को लगते हैं कि अरे ये तो ये चीज़ बज रही है, ये चीज़ बज रही है। चलिए अगले गाने की तरफ पहुंचते हैं और ये अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, आशा जी की आवाज में।
1: हाल कैसा है जनाब का,
2: क्या ख्याल है आपका।

ये गाना सुन रहे थे आप फिल्म आर पार से, जो आई थी 1954 में। गीता दत्त की आवाज में ये गीत सुना आपने, ओपी नैयर के संगीत के साथ। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म दिल्ली का ठग से।

आप सभी जुड़े हुए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं ओल्ड मेलोडीज, और सच में एक से बढ़कर एक इतने प्यारे प्यारे से गाने हैं जो मन को लुभा रहे हैं। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए फिल्म नया दौर से, आशा जी और शमशाद बेगम के आवाज़ में, संगीत ओपी नैयर साहब का।

ये प्यारा सा गीत सुना आपने फिल्म लीडर से मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में, और संगीत दिया नौशाद जी ने, और अगला गीत है फिल्म कन्हैया से मुकेश कुमार की आवाज़ में।

0: वक्त कह रहा है कि गीत सुहाने को हम यहीं विराम दें, बिल्कुल रुक नहीं सकते और अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: आज की ताजा,
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESSC की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूल शासन और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें उच्च रिजोल्यूशन, ग्राम संसाधन मानचित्रण, आर्द्र भूमि, वन, नदियों और भू दृश्यों की नियमित निगरानी, पूर्वोत्तर में भूस्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म NER शील्ड का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए विशेष ढांचा तैयार करना शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी और झारखंड से प्रणव झा को पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। इसके अलावा तमिलनाडु से होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रवीण चक्रवर्ती को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपये के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 5 से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समा

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई लेकर माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। मोहब्बत का कोई सदमा उठाना चाहिए था, भुलाया था जिसे वो याद आना चाहिए था। और मेरी आरजू और उसकी आरजू में फ़र्क ये था, मुझे बस वो उसे सारा जमाना चाहिए था।

याद आना उसका महंगा पड़ गया, रंग तन्हाई का फीका पड़ गया। हर तरफ यादें ही थीं उस शहर में, मैं वहां जाकर अकेला पड़ गया।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव।

0: यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये सफर है रात सुरमई का, और रात सुरमई में होती हैं दिल की बातें आपसे। नाउमीदी मौत से कहती है अपना काम कर, आस कहती है ठहर, खत का जवाब आने को है। और जगजीत सिंह की आवाज़ में ये जो गज़ल आप तक पहुंच रही है, जिसमें वो कहते हैं कि तेरे खुशबू में बसे ख़त मैं जलाऊं कैसे, यानी ख़तों की जो अहमियत है, ख़तों में जो बात है, जो प्यार का ख़जाना छुपा है, उसे अपने से दूर कैसे करूं, यार दूर हो भी जाए पर ये जवाब, ये ख़त व खतूत का ये मामला अपने से दूर कैसे किया जाए।

देर तक देखा किए, फिर सो गए। चांद दरिया पेड़ गड्ढमड हो गए। तारों ने सब बसेरा कर लिया, पेड़ के अरमां पूरे हो गए। चार छह सिक्के थे, खोटे ही सही, देखिए किस्मत की वो भी खो गए।

बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता।

और अब जाते जाते ये भी सुनिए कि जाने वाले से मुलाकात न होने पाई, दिल की दिल में ही रही बात न होने पाई, तो फिर क्या हो, फिर मिलने का वादा हो, यही बात होगी। और ये रात सुरमई का आखिरी नगमा आप सभी के लिए, इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त माधुरी को।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित ना रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 5 से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में आया अमरीकी प्रतिनिधिमंडल भारत की 4 दिन की यात्रा संपन्न कर कल स्वदेश लौट गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं के व्यापार, गैर शुल्कीय बाधाओं, सीमा शुल्क तथा व्यापार सुगमता, आर्थिक सुरक्षा समन्वय और अन्य साझा हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1 वर्ष का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख से प्रभावी होगा और ये 1 और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने यूएनआईएफआईएल के साथ तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। भारतीय मिशन ने सोशल मीडिया पर इस हमले में मारे गए सर्बियाई शांति सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल शांति सैनिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कल केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Ajay Kumar.

आप सुन रही हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है रात्रि के 3:10, माफ कीजिएगा 3:11 और हमेशा की तरह आप सुनते हैं रोज अपना पसंदीदा कार्यक्रम हमराही। कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, दिन भर की भागदौड़, जिम्मेदारियों और थकान के बाद अब समय है कुछ पल खुद के साथ बिताने का। रात का ये सुहाना सफर लेकर आया है कुछ खूबसूरत बातें, कुछ अनमोल एहसास और कुछ यादें और कुछ ऐसे जज्बात जो अक्सर दिन के उजाले में हमसे छूट जाते हैं। तो आइए, दिल के दरवाजे खोलिए, भावनाओं को बहने दीजिए और इस खुशनुमा रात का आनंद लीजिए।

0: जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म तीन देवियाँ से। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, ये अपने साथ सुकून भी लाती है। दिन में हम दुनिया की आवाज़ें सुनते हैं, लेकिन रात में अपने दिल की आवाज़ सुन पाते हैं। रात की खामोशी में घड़ी की टिक टिक भी कहानी सुनाती है, हवा की हल्की सरसराहट भी किसी अपने का संदेश लाती है। कई बार हम दिन भर मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन रात होते ही कुछ यादें चुपके से आकर बैठ जाती हैं, जिनको रोक पाना मुश्किल होता है। कहती भी हैं कि रात चुप थी मगर दिल में शोर बहुत था, जिसे भूलना चाहा उसी का जिक्र बहुत था।

मेरी सनम फिल्म में ये आवाज़ें थीं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। यादें भी बड़ी अजीब होती हैं, कुछ यादें मुस्कुराहट बन जाती हैं, कुछ आंखों में नमी छोड़ जाती हैं। कभी स्कूल के दोस्त याद आते हैं, तो कभी बचपन की गर्मियों की छुट्टियां, कभी माँ की आवाज़, तो कभी किसी ख़ास का साथ। यादें कभी पुरानी नहीं होती, बस वक्त के साथ और कीमती हो जाती हैं। वक्त गुजर जाता है लेकिन कुछ लोग नहीं जाते, दिल के किसी कोने में हमेशा बसे रह जाते हैं।

यह आवाजें थी मोहम्मद रफी और नंदा की। फिल्म का नाम था जब जब फूल खिले। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 3:30 और ठीक 43 सेकेंड।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत रिश्ते होते हैं। घर बड़ा हो या छोटा, अगर उसमें अपनापन है तो वही सबसे खूबसूरत जगह है। एक फोन कॉल, एक हालचाल और एक सच्ची मुस्कुराहट, कई बार इतना ही काफी होता है किसी का दिन बेहतर बनाने के लिए। आज अगर कोई अपना याद कर रहा है तो उसे जरूर बात कीजिए, हो सकता है वो भी आपकी आवाज सुनने का इंतजार कर रहा हो।

हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ सपने, कुछ मुलाकातें, कुछ शिकायतें, लेकिन शायद ज़िंदगी का नाम ही अधूरापन है। अगर सब कुछ सबको मिल जाए तो तलाश ख़त्म हो जाएगी, और जब तलाश ख़त्म हो जाएगी तो ज़िंदगी भी उतनी दिलचस्प नहीं रह जाएगी। कहते भी हैं कि कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहें तो अच्छा है, ज़िंदगी को आगे बढ़ने का बहाना मिलता है।

दोस्तों, रात का समय खुद से मिलने का सबसे अच्छा समय है। पूछिए खुद से, आज मैंने क्या सीखा? किसी को खुश किया? किसी का दिल तो नहीं दुखाया? अगर जवाब अच्छे हैं तो मुस्कुराइए। अगर कहीं गलती हुई है तो कल उसे सुधारने का संकल्प लीजिए, क्योंकि हर सुबह नया मौका देती है।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म सावन की घटा से। दोस्ती वो रिश्ता है जो खून से नहीं दिल से बनता है। सच्चा दोस्त वो होता है जो आपके अच्छे दिनों में तालियां बजाए और बुरे दिनों में आपका हाथ थाम ले। ऐसे दोस्तों को कभी मत खोइए, क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में दोस्ती का रंग जरूर होता है।

जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भले ही साथ ना हो लेकिन दिल से कभी दूर नहीं जाते। उनकी बातें, उनकी हंसी, उनका साथ, सब कुछ यादों में जीवित रहता है। रात अक्सर उन्हीं लोगों की याद लेकर आती है। चांद को देखा तो तेरी याद चली आई, रात महकी और तन्हाई मुस्कुराई।

दोस्तों, उम्मीद है कि आज की रात के इस सफर में आपको अपने दिल के करीब कुछ पल मिले होंगे। जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी, जो बीत गया उसे याद रखिए, जो मिला है उसका सम्मान कीजिए और जो आने वाला है उसका स्वागत कीजिए। मैं आपकी हमराही अर्चना गोयल अब आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों

0: वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कल केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ajay Kumar. Prime Minister Narendra Modi yesterday held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health, and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries.

नई सुबह की पहली आहट के साथ आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम अरुणिमा में। मैं आपकी हमसफर अर्चना गोयल अगले 50 मिनट तक हम साथ बिताएंगे कुछ ऐसे पल जो मन को शांति देंगे, विचारों को पॉजिटिव दिशा देंगे और जीवन में नई ऊर्जा भर देंगे। इस समय घड़ी में सुबह के 4:11 हुए हैं। बाहर अभी अंधेरा है, लेकिन प्रकृति के भीतर एक नई सुबह जन्म लेने की तैयारी कर रही है। पक्षियों की चहचहाहट अभी शुरू नहीं हुई, सड़कों पर सन्नाटा है और वातावरण में एक अद्भुत शांति फैली हुई है। यही वो समय है जब हम अपने मन की आवाज सबसे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, और ये आवाज अगर प्रार्थना के रूप में हो तो क्या बात है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था फिल्म शागिर्द से। दोस्तों, हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज का दिन हमारे हाथ में है। एक छोटी सी बात याद रखिए, सूरज हर दिन ये संदेश लेकर आता है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। जीवन में समस्याएं सभी के पास होती हैं, लेकिन सफल वही होता है जो समस्याओं के बीच भी संभावनाएं ढूंढ लेता है।

सुबह का ये समय आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। इस समय मन शांत रहता है और विचारों में स्पष्टता आती है। आज का विचार है कि दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दीजिए, स्वयं को बेहतर बनाने की शुरुआत कीजिए। जब हम अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं तो दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखाई देने लगती है।

0: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:28 और ठीक 43 सेकेंड।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: अक्सर हम अपनी खुशियों को भविष्य के किसी दिन के लिए टाल देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा का हिस्सा है।

एक बार एक व्यक्ति गुरु के पास गया और बोला, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। गुरु उसे एक तालाब के पास ले गए और एक मुट्ठी नमक पानी में डाल दिया। फिर बोले, इस पानी को पीकर देखो। व्यक्ति ने कहा, पानी कड़वा हो गया। गुरु फिर उसे एक बड़ी झील के पास ले गए और उतना ही नमक उसमें डाल दिया। जब व्यक्ति ने झील का पानी पिया तो वह सामान्य था। गुरु मुस्कुराए और बोले, दुख नमक की तरह है, उसकी मात्रा नहीं बदलती। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका मन तालाब जितना छोटा है या झील जितना विशाल। इसलिए अपने मन को बड़ा बनाइए, समस्याएं छोटी लगने लगेंगी।

दोस्तों, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कुछ लोग जागकर अपने सपनों को आकार दे रहे होते हैं और कुछ लोग ईश्वर का स्मरण कर रहे होते हैं। विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब रास्ता दिखाई न दे तब विश्वास वो दीपक है जो आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।

आज सुबह ईश्वर को धन्यवाद कहिए, धन्यवाद उस जीवन के लिए जो मिला, उन लोगों के लिए जो आपके साथ है, और उन चुनौतियों के लिए जिन्होंने आपको मजबूत बनाया।

हम अक्सर बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं और छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सोचिए, सुबह की ठंडी हवा, चाय की पहली चुस्की, माता पिता का आशीर्वाद, बच्चों की मुस्कान, ये कितनी बड़ी नेमतें हैं। आज का संकल्प, मैं हर दिन कम से कम ऐसी बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा जो मेरे जीवन को सुंदर बनाती है।

दोस्तों, याद रहना, हारने वाले भी वही रास्ते देखते हैं जो जीतने वाले देखते हैं। फ़र्क सिर्फ नज़रिए का होता है। अगर आपको कोई काम कठिन लग रहा है तो खुद से कहिए कि मैं कोशिश करूँगा या मैं कोशिश करूँगी। यही कोशिश धीरे धीरे सफलता में बदल जाती है।

और अब धीरे धीरे पूर्व दिशा में उजाला फैलने को तैयार है। नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। जाने से पहले एक विचार, हर सुबह जीवन हमें दो विकल्प देता है, सपनों के साथ सोती रहिए या उठकर उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। इसी प्रेरणा के साथ मैं अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

ये था कार्यक्रम अरुणिमा। 5:10 पर आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम भोर सुहानी में। और अब वक्त है समाचारों का, आइए सुनते हैं समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला संबंधों पर चर्चा की। इसके साथ ही ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी

0: को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा।

0: वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
1: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। नेपाल की विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केरल द्वारा किए गए एक पोस्ट का खंडन किया है। इस पोस्ट में राजेश एक्सपोर्ट्स के चालू वित्त वर्ष के आंकड़ों की तुलना भारत के वित्त वर्ष 2026 के आईटी निर्यात डेटा से की गई थी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी जानकारी या दावे को साझा करने या उस पर भरोसा करने से पहले विश्वसनीय आधिकारिक स्रोतों से उसकी जांच अवश्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगा और युवाओं के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराएगा। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Prime Minister Narendra Modi yesterday held talks with acting President of Venezuela, RLC Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talk, Secretary Srudhendra Tandon said, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said the discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. The Appointments Committee of the Cabinet has approved a one-year extension for Tarun Kapoor, a retired 1986

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं भोर सुहानी, एक ऐसा कार्यक्रम जो सुबह की ताजगी, प्रकृति की सुंदरता और सकारात्मक विचारों के साथ आपकी दिन की शुरुआत को और भी खूबसूरत बनाता है। कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाश

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो आइए आज की इस सुहानी भोर में आपके साथ कुछ पल बिताते हैं और अपने मन को नई ऊर्जा से भरते हैं।

दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि पेड़ कभी शिकायत नहीं करते? वे हर मौसम को स्वीकार करते हैं, गर्मी, सर्दी या बरसात। वे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल्यों और विश्वास से जुड़ा रहता है, वो हर परिस्थिति को संभाल लेता है।

सुबह की ओस की बूंदें हमें सिखाती हैं कि छोटा होना कमजोरी नहीं, एक छोटी सी बूंद भी सूरज की किरणों में मोती जैसी चमक सकती है। आज का सुविचार है कि जीवन में महान बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने जीवन की अच्छाई को चमकाना बेहद जरूरी है।

0: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी, और भोर सुहानी के साथ जुड़ी है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:25 और ठीक 25 सेकेंड।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ एफएम गोल्ड पर।
0: सुबह होते ही पंछियों का कलरव शुरू हो जाता है। वे भविष्य की चिंता में नहीं डूबते, न ही बीते हुए कल का बोझ उठाते हैं, वो बस वर्तमान में जीते हैं। हम अक्सर अपनी खुशी

कुर्सियाँ कल पर टाल देते हैं। सोचते हैं जब सब ठीक होगा तो सब खुश होंगे, लेकिन प्रकृति कहती है कि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं बल्कि सफ़र का हिस्सा है। जब आप सुबह की हवा और खिलते हुए फूलों को देखते हैं तो एहसास होता है कि खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए।

दोस्तों, सूरज की पहली किरण केवल धरती को ही नहीं जगाती बल्कि उम्मीदों को भी जगाती है। हर नया दिन एक खाली पन्ने की तरह होता है। कल की गलतियां उस पन्ने पर नहीं होती। यदि कल कुछ अच्छा नहीं हुआ तो भी आज आपके पास एक नया अवसर है। कहते भी हैं कि बीता हुआ समय एक अनुभव है और आने वाला समय अवसर। दोनों के जो वर्तमान हैं वही जीवन है।